जीवन ज्योत जले। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भोर सुहानी में। हर नई सुबह हमें ये याद दिलाती है कि जिंदगी का हर दिन एक नया मौका है मुस्कुराने का, सीखने का और आगे बढ़ते जाने का। और आगे वही बढ़ता है जो सकारात्मक सोच लेकर जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है, क्योंकि मुश्किलात हर शख्स के जीवन में बार बार आती हैं, लेकिन वही कामयाब होता है, वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है जो बस चलना जानता है, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, अपनों का साथ देते हुए, अपनों का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए। अगर दिल में उम्मीद हो और होंठों पर मुस्कान हो तो मुश्किलें आसान हो जाती है और रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। बीती हुई बातों को रुखसत कीजिए, पीछे छोड़िए और आज की सुबह का इस्तकबाल पूरे हौसले और यकीन के साथ कीजिए, क्योंकि जो इंसान जिंदगी का गीत गुनगुनाता है उसे गुनगुनाना नहीं छोड़ता, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, गाते हुए गुनगुनाते हुए उसकी राह में खुशियाँ खुद ब खुद दस्तक देने लगती हैं। ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रोफेसर प्यारेलाल, फिल्म से किशोर कुमार साहब और मनहर उदास साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर स्वागत है आपका भोर सुहानी में। नई सुबह की यह सुनहरी रोशनी हमें याद दिलाती है कि जीवन का हर दिन एक नया अवसर है सीखने का, आगे बढ़ने का और मुस्कुराने का। दोस्तों, जिंदगी में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। गीता का ज्ञान हमें ये सिखाता है कि कर्म करते रहिए, परिणाम की चिंता में अपने मन की शांति न खोइए। जब सोच सकारात्मक हो, अच्छी हो और दिल में यकीन हो तो हर चुनौती एक नई सीख बन जाती है। ऐसे ही एक बेहद खूबसूरत नगमे के साथ हम आगे बढ़ेंगे, फिल्म सन्यासी से। आवाज है मुकेश साहब और लता जी की। तो आइए इस नई भोर के इस नई सुबह में हम भी एक अहद करें, एक इरादा करें कि हर दिन अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ाएंगे कदम अपना और हर परिस्थिति को स्वीकार करेंगे और उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ही मुस्कुराते हुए जीवन को आगे बढ़ाएंगे।

0: आपके साथ मैं फरहत नाज। मंत्रिमंडल ने देश में सेमीकंडक्टर की डिजाइन और निर्माण तंत्र को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमियों की भी क्षमता को मजबूत करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते, सुरक्षा तथा रक्षा साझेदारी और गतिशीलता ढांचे द्वारा समर्थित भागीदारी की मजबूत गति को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रसेल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद ये बात कही। भारत और बेल्जियम व्यापार तथा निवेश, हरित ऊर्जा परिवर्तन, नवाचार और प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी, रक्षा सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में परस्पर आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए हैं। भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की बैठक ब्रुसेल्स में आयोजित की गई। मध्य प्रदेश से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए प्रति उड़ान 15,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता

0: नागरिकता देगी। उन्होंने कहा कि पहले किराया लगभग 24 से 25 हजार रुपए प्रति सीट था, अब ये घटकर 12 से 15 हजार रुपए हो गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत और विदेशों के प्रमुख कपड़ा निवेशकों और उद्योग प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। श्री यादव भारत मंडपम में मध्य प्रदेश पवेलियन का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। लाल किला परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। अमरीकी सेना ने ईरान पर फिर से हमले शुरू करने की घोषणा की है। अमरीकी सेना की केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान में कई ठिकानों पर रात भर लगातार हमले किए गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज उड़ीसा के पुरी में शुरू हो रही है। लगभग 3 किलोमीटर की इस यात्रा का समापन श्री गुंडेचा मंदिर में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया है। फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। वहीं अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 25वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिला दी। 90वें मिनट में लुटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The Union Cabinet approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav announced about the Cabinet decisions while briefing media in New Delhi yesterday. Mr. Vaishnav said, building on the momentum of Semicon 1.0, the scheme aims to further the government's commitment to putting India on the global semiconductor map. The minister said the cabinet also cleared the mobile manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees aimed at scaling up domestic mobile phone production, deepening local value addition and strengthening India's position as a global electronics manufacturing hub. The government also approved 2 elevated corridor projects at Varanasi in Uttar Pradesh to improve road connectivity and reduce congestion and travel time. The cabinet also gave nod to 2 multi-tracking projects covering 4 districts across Odisha and Jharkhand, expanding the Indian Railways network by about 145 kilometers. It also approved the National Investment Policy for Urea 2026 for Atmanirbhar Bharat. Prime Minister Narendra Modi will visit Haryana, Chandigarh and Punjab tomorrow. The Prime Minister will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station in Haryana. Mr. Modi will lay the foundation stone and dedicate to the nation various development projects worth around 14,700 crore rupees at Eklavya Stadium in Jind. World-famous Rath Yatra of Lord Jagannath and his 2 siblings, elder brother Lord Balabhadra and younger sister Devi Subhadra, will begin today at Puri in Odisha. During the annual festival of Rath Yatra, Lord Jagannath and his 2 siblings give darshan to the public in the chariots and visit Gundicha Temple, revered as maternal answer board of Lord Jagannath. The yatra, which starts from the Puri Temple, will end at the Sri Gundicha Temple, covering a distance of nearly 3 kilometres. Multi-layer security arrangements have been put

हैदराबाद, गुड मॉर्निंग हैदराबाद, गुड मॉर्निंग।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct bore wells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.

0: ईरानी चाय,
1: बन मस्का,
0: हैदराबादी बिरयानी,
1: टंग दी कबाब,
0: कुर्बानी का मीठा,
1: शहदूद मलाई,
0: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
1: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड.
0: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्न ए हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट.
1: From 2 to 3 p.m. every day on FM Rainbow 101.9.
0: It's not just food.
1: It's culture, history and flavor rolled into one.
0: Jashne Hyderabad.

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt to rainwater harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct bore wells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.

वेलकम बैक दोस्तों। अभी तक आपने मुझे हमारे सीनियर आरजेज आजिश्रित और आरजे निशा के साथ सुना था, लेकिन आज मेरा पहला सोलो शो है ना। और आज का दिन थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज से आपका और मेरा एक प्यारा सा नया सफ़र शुरू होता है। उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये सफ़र हसीन और सुहाना रहे, और अगर बीच में मुझसे कोई भूल हो जाए तो दिल बड़ा करके माफ़ कर दीजिएगा, वक्त के साथ साथ सीख जाऊँगी। पता है दोस्तों, ये पहली बार वाली फीलिंग भी ना कितनी अजीब होती है। स्कूल का पहला दिन हो या पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे हो, दिल में ढेर सारी बटरफ्लाइज होती हैं, पर दिमाग में एक अजीब सा सुकून रहता है। आज वैसा ही सुकून और वैसी ही एक्साइटमेंट मुझे आपके साथ महसूस हो रही है। तो फिर चलिए, देर किस बात की, शुरू करते हैं हमारे इस हसीन सफ़र को एक ऐसे गाने के साथ जो आपके दिल में एकदम से एक नई एनर्जी भर देगा।

वेलकम बैक दोस्तों, दैट वॉज टेक मी होम कंट्री रोड्स बाई जॉन डेनवर. डोंट यू जस्ट लव हाउ दैट सॉन्ग इंस्टेंटली ट्रांसपोर्ट्स यू टू अ प्लेस यू हैव प्रॉबली नेवर बीन टू. इट हैज़ दिस मैजिकल एंड अर्दी वॉर्म्थ टू इट, राइट? एंड स्पीकिंग ऑफ दोज कंट्री रोड्स, आई वॉन्ट टू ऑफर यू अ टाइनी एस्केप वाइल यू टाइपिंग अवे एट योर डेस्क. अलाउ मी टू टेक यू ऑन अ जर्नी फार अवे फ्रॉम दोज ग्लोइंग स्क्रीन्स. शॉर्टली वी आर गोइंग टू ट्रैवल टू द ब्यूटिफुल लश ग्रीन फार्म्स इन द फार अवे लैंड्स. आई बी शेयरिंग अ लिटिल स्लाइस ऑफ वॉट लाइफ इज लाइक आउट देयर, वेर द एयर इज क्लीन, द सॉइल स्मेल्स फ्रेश एंड टाइम मूव्स जस्ट अ लिटिल बिट स्लोअर. सो सिट बैक, रिलैक्स एंड कीप लिसनिंग टू एफ एम रेनबो 101.9.

Welcome back, dosto. This is RJ Malyavika keeping you company. As promised, let me take you on a journey. So close your eyes if you can, or just stare out at the horizon and travel with me. दोस्तों हम सब इस वक्त एयर कंडीशन्ड ऑफिसेस में बैठे हैं, कीबोर्ड्स पर कंटिन्यूसली टाइप कर रहे हैं और स्क्रीन्स पर आते जाते नोटिफिकेशंस को देख रहे हैं, है ना? या फिर शहर के इस हलचल में गुम हैं। लेकिन क्या आपको पता है, अभी इस वक्त हमसे बस थोड़ी ही दूर में एक अलग ही दुनिया सांस ले रही है। शहर से दूर गाँव में सुबह सुबह किसान खेत पर पहुँच चुके हैं। क्रॉपिंग सीजन आने वाला है तो सब मिलकर मिट्टी को तैयार कर रहे हैं। मैं यहाँ बैठे बैठे भी उस गीली मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू को महसूस कर सकती हूँ जो मिट्टी पलटने पर आती है। क्या आपको भी वो महसूस होता है? वहाँ गाँवों में हमारी तरह कोई मेट्रो की जल्दबाजी नहीं है, कोई रेड सिग्नल पर हॉर्न बजाने का शोर भी नहीं है। लोग अभी भी सुबह सुबह खेत चल कर जाते हैं, कुछ लोग साइकिल चलाते हुए ठंडी हवा का मज़ा लेते हैं, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और हालचाल पूछ लेते हैं। हमारी शहरी ज़िंदगी में भी हम हर चीज़ को अपग्रेड करने में लगे हैं। फास्ट इंटरनेट चाहिए, फास्ट लाइफ, फास्ट एवरीथिंग, फास्ट सब कुछ, राइट? लेकिन गांव की इस तस्वीर को देखकर लगता है कि सच में कुछ चीज़ों का वैसा ही रहना ही या वैसा ही रहना भी ज़रूरी है। उनका धीमे चलना ही तो ज़िंदगी का असल सुकून है, क्यों? चलिए मिट्टी की इसी खुशबू और इस सुकून को हमारे दिल में थोड़ा और बसाते हुए आपके लिए ये अगला गाना। आप सुन रहे हैं FM रेनबो 101.9, रेनबो से ज़िंदगी रंगीन।

0: दोस्तों, अभी मिट्टी दी खुशबू हम सुन रहे थे। सच में वो गाना सुनते ही हमें मिट्टी की याद दिला दी। दोस्तों, अभी हम थोड़ी देर पहले गांव में खेतों की बात कर रहे थे, है ना। लेकिन हम सब जानते हैं कि फार्मिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है बारिश। जी हाँ, बिना सही वक्त के बारिश के मिट्टी कितनी भी अच्छी हो, सब अधूरा लगता है। और इस साल मिड जुलाई आ गया है और हैदराबाद में धूप भी थोड़ा गर्म ही है। आखिर ये डिले के पीछे का असली रीज़न क्या है, बताइए। चलिए मैं बताती हूँ। मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक इस साल आसमान पर असर है एल नीनो का, यानी एल नीनो इफेक्ट। इसमें होता क्या है? होता यूँ है कि प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन ओशन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, पैसिफिक ओशन का पानी नॉर्मल से ज़्यादा गर्म होने की वजह से ग्लोबल विंड का पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। और इसी वजह से आज हमारे ट्रेडिशनल मॉनसून विंड्स वीक हो गए हैं और रेन सिस्टम भी थोड़ा तेलंगाना से अलग ट्रैक लेकर गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ निकल गए और हमारे यहाँ ड्राई स्पेल चल रहा है। लेकिन हमारे किसान भी हार नहीं मानते। वो इस सिचुएशन को बड़े ढंग से डील करते हैं, बड़ी अच्छी तरह से डील करते हैं। बारिश भले ही लेट क्यों ना हो, लेकिन किसान बोरवेल्स या ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करके पानी के एक एक बूंद को बचा के हमारे लिए अनाज उगाते हैं। तो बस इसी खूबसूरत बात के साथ अगला गाना आपके लिए।
1: డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ డిగ్రీ పీజీ డిప్లొమా సర్టిఫికేట్ కోర్సుల్లో అడ్మిషన్లు జరుగుతున్నాయి. చివరి తేదీ ఆగస్టు 7. వివరాలను సమీపంలోని స్టడీ సెంటర్లో లేదా హెల్ప్ డెస్క్ 0402368033 లేదా 2368055 లో లేదా www.brao.ac.in లో పొందవచ్చు.

वेल दोस्तों, वेलकम बैक। एक बात पूछूं आपसे, कभी सोचा है? हम अक्सर कहते हैं हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। पहले मुझे भी ये लाइन थोड़ी उदास लगती थी। ऐसा लगता था जैसे ये सिर्फ हमें याद दिला रहा है कि एक दिन सब कुछ चले ही जाएगा। लेकिन फिर एक दिन इसका मतलब कुछ और ही समझ आया मुझे। खाली हाथ होना शायद कमी नहीं है, वो तो एक खूबसूरत आज़ादी है। सोचिए, अगर हमारे हाथ पहले से ही पुरानी बातें, गिले शिकवे, फिक्र और बोझ से भरे हों, तो फिर नई खुशियों के लिए जगह कहाँ से बचेगी, है ना? सोचने वाली बात है। किसी अपने को गले लगाना हो, किसी दोस्त का हाथ थामना हो, बारिश की पहली बूंदों को हाथों से महसूस करना हो, या ज़िंदगी जब अचानक से कोई नया मौका दे, उसे दोनों हाथों से अपनाना हो, तो हाथ खाली होना तो ज़रूरी ही है ना? क्यों? शायद इसीलिए ज़िंदगी हमें बार बार कहती है, जो बीत गया उसे पकड़ कर मत बैठो, हाथ हल्का रखो, ताकि ज़िंदगी जब दस्तक दे तुम उसका खुले दिल से और खुले हाथों से स्वागत कर सको। और इसी बात पर मुझे एक गाना याद आ रहा है दोस्तों, जो हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी कितनी भी लंबी या छोटी क्यों ना हो, हर पल को जीना ज़रूरी है। तो बस यही ऋतिक रोशन की एनर्जी से भरा हुआ ये गाना एक पल का जीना फ्रॉम द मूवी कहो ना प्यार है। सुनिए सिर्फ FM रेनबो 101.9।

वेलकम बैक दोस्तों, नमस्ते, हेलो, आदाब पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी मेज़बान माल्यविका और आप सुन रहे हैं FM रेनबो 101.9।

दोस्तों, कभी ऐसा लगा है कि हम रोज़ एक ही रास्ते से गुजरते हैं, एक ही ट्रैफिक सिग्नल, एक ही चाय की दुकान, वही ऑफिस, और फिर हर दिन कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है। वही तो ज़िंदगी की खासियत है। बस हमारी नज़र उन पे कम ही जाती है। कभी ऑफिस जाते हुए सिग्नल पर गाड़ी रोककर ज़रा आसपास देखिएगा, हो सकता है कि किसी की दादी अपने पौधों को पानी दे रही हो, एक छोटा सा बच्चा अपने स्कूल बस का इंतज़ार करते करते आसमान में उड़ते कबूतरों या पंछियों को देख रहा हो, या किसी की बालकनी में हवा के साथ साथ कपड़े भी नाच रहे हो, या कोई अपनी सुबह की चाय लेकर बस खामोशी से बदलते हुए आसमान को देख रहा हो। ये सब रोज़ होता है, क्यों है ना, लेकिन रोज़ बिल्कुल एक जैसा नहीं होता है। आज बालकनी में एक नया फूल खिला होगा, कल उसी गली में किसी की नई साइकिल आई हुई होगी, या परसों किसी के घर में बहुत ज़ोर से हंसी की आवाज़ें आ रही होगी, और शायद इसी में ज़िंदगी की खूबसूरत छुपी है। हम अक्सर बड़े बड़े मोमेंट्स में अपने लिए खुशियाँ ढूंढते हैं, लेकिन जब ज़िंदगी अपने इस सबसे प्यारी कहानियाँ मैं बोल रही हूँ कौर बदभा फिर से बोलती हूँ कि हम लोग अक्सर ज़िंदगी में खुशियाँ बड़े बड़े मोमेंट्स या सरप्राइजेस में ढूंढते रहते हैं, लेकिन देखा जाए तो ज़िंदगी की सबसे प्यारी कहानियाँ इन छोटे छोटे लम्हों में ही लिखी रहती हैं। तो जब आप लंच ब्रेक में बाहर निकलेंगे या शाम को घर लौटते वक्त उसी रास्ते से जब गुजरेंगे, तो ज़रूर एक बार रास्ते में इधर उधर देखिएगा, क्या पता आपको हर दिन एक नया किस्सा देखने को मिलेगा। तब सुनते रहिए हमारे साथ FM Rainbow 101.9। ये है मालविका आपके साथ।

वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपकी मेज़बान मालिया विका और आप सुन रहे हैं FM रेनबो 101.9। तो दोस्तों बात करते हैं जर्नीज़ की, ठीक है। तो ये बताएं कि आपने कभी ट्रेन में ट्रैवलिंग किया है? सच बताओ तो मुझे ट्रेन में विंडो सीट सिर्फ एक सीट नहीं लगती, वो एक फ्रंट रो टिकट लगती है ज़िंदगी को देखने के लिए। ट्रेन चलती रहती है और उसके साथ साथ कहानियाँ भी चलती हैं। एक ही कंपार्टमेंट में कितनी ही सारी जिंदगानियाँ कुछ घंटों के लिए एक साथ सफ़र करती हैं, आपने कभी सोचा है ऐसा? आपको शायद सामने बैठे हुए इंसान का नाम भले ही पता ना हो, लेकिन उनकी छोटी छोटी बातें याद रह जाती हैं। कोई खिड़की के पास बैठकर अपने नॉवल का आखिरी चैप्टर पढ़ रहा होता है, या मम्मी के डब्बा खोलते ही कंपार्टमेंट में पूरे खाने की खुशबू फैल जाती है, या बच्चों या छोटे छोटे बच्चे जो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं हमारे साथ, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, है ना। या कोई, या हम अक्सर गाने लगा के अपनी जर्नी का, सफ़र का एंजॉय, अपने सफ़र को एंजॉय करते हैं और चाय पीते पीते चाय वाले का भी इंतज़ार करते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि ये जर्नीज कितनी खास होती है? मंजिल ज़रूर याद तो रहती है, लेकिन सफ़र वो हमेशा थोड़ा और ज़्यादा याद रहता है। और ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है, है ना। हम अक्सर अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए जल्दी में रहते हैं और बस यूं ही गुम हो जाते हैं अपने ख्यालों में। तो दोस्तों बताइए कि आपका सबसे यादगार ट्रेन जर्नी कौन सी थी। आप हमें अपने व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 4023234822। तब तक के लिए सुनिए एक खूबसूरत सा गाना आपके लिए।

वेलकम बैक दोस्तों। अभी आप सुन रहे थे लकी अली की आवाज़ में सफ़रनामा फिल्म तमाशा से। पता है इस गाने की एक सबसे खूबसूरत लाइन क्या है? वो लाइन है जिसे ढूंढा जमाने में मुझ ही में था। अक्सर हम खुशियां बाहर ढूंढते हैं, लेकिन असली सफ़रनामा तो वो है ना जो हमें खुद तक ले चले। इसी के साथ ऐसे ही एक सफ़र के बारे में मैं आपको जल्द ही बताती हूँ। और आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ जुड़े हैं सरवर अली जी, जिन्होंने हमें व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग भेजा है। सरवर अली जी, आपको भी अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू। और उन्होंने हमें अपने पुराने रेडियो सेट्स का फ़ोटो भेजा है, और मैं बस कहना चाहती हूँ थैंक यू सर हमें सुनने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए और हमें हमारा साथ देने के लिए। तो आप सभी श्रोताओं को भी थैंक यू हमें सुनने के लिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक प्यारे से गाने के साथ, और फिर आगे चलते हैं एक कहानी के साथ।

0: ईरानी चाय,
1: बन मस्का,
0: हैदराबादी बिरयानी,
1: टंग दी कबाब,
0: कुर्बानी का मीठा,
1: शहदूद मलाई।
0: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
1: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
0: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्ने हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
1: फ्रॉम 2 to 3 PM एवरी डे ऑन FM रेनबो 101.9।
0: इट्स नॉट जस्ट फूड,
1: इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इनटू वन।
0: जश्ने हैदराबाद।

दोस्तों, जब सफ़र की बात चल रही है तो आज का दिन हमें याद दिलाता है एक ऐसे सफ़र की जो सिर्फ रास्ते का नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और एकता का सफ़र है। जी हाँ, जगन्नाथ रथ यात्रा। हर साल उड़ीसा के पुरी से निकलने वाली ये रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं है बल्कि लाखों लोगों के विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर कहानी भी है। माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ उनके बड़े भाई बालभद्रा और बहन सुभद्रा के साथ साल में एक बार अपने मंदिर से निकलकर गुडिंचा

गुडिंचा मंदिर यानी अपने मौसी के घर यात्रा पर जाते हैं और इसी यात्रा की याद में हर साल ये भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। इस उत्सव की एक और खास बात ये है कि भगवान मंदिर के अंदर ही नहीं रहते बल्कि स्वयं बाहर निकलकर अपने भक्तों के बीच आते हैं। शायद इसीलिए इस यात्रा का इंतज़ार लोगों को पूरे साल रहता है। आप सुन रहे हैं FM रेनबो 101.9 रेनबो के साथ जिंदगी रंगीन।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct borewells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.

दोस्तों, रथ यात्रा की बात करते हुए एक और बात आपके लिए। रथ यात्रा की सबसे खूबसूरत बात सिर्फ उसकी परंपरा नहीं, बल्कि उसका संदेश भी है। सोचिए, इतने विशाल लकड़ी के रथ को ना कोई इंजन, ना कोई मशीन, फिर भी वो आगे बढ़ते हैं। कैसे? हजारों लोग एक साथ एक ही रस्सी को थामते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ रथ को खींचते हैं। मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक रथ नहीं चलाते, ये हमें एक बहुत ही प्यारी बात सिखाता है। जब हाथ जुड़ते हैं तो सफ़र आसान हो जाता है। ज़िंदगी में भी तो ऐसा ही होता है ना? कभी माँ बाप का सहारा हो, या दोस्त का दिया हुआ हौसला, या टीचर की कोई बात, या कभी कभी किसी बिल्कुल अनजान इंसान से ली हुई छोटी सी मदद, हमारा सफ़र थोड़ा और आसान बना देती है ना? तो आज इस खूबसूरत मौके पर एक पल के लिए उन लोगों को ज़रूर याद कीजिएगा जिन्होंने कभी कभी भी बिना किसी मतलब के आपका हाथ थामा था। और अगर आज भी वो लोग आपके साथ हैं तो ये याद रखिए कि आप बहुत ही लकी हैं, और उन्हें एक छोटा सा थैंक यू तो बनता है बॉस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और बेहतरीन गीत सिर्फ FM रेनबो 101.9।

वेलकम बैक दोस्तों, आज हमने जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में बात की, लेकिन क्या आप जानते हैं इस रथ यात्रा की एक और खूबसूरत बात क्या है? वो है कि हर साल जो भव्य रथ बनाए जाते हैं उनके लिए कोई मामूली सी लकड़ी का इस्तेमाल नहीं होता। उड़ीसा के कुछ चुनिंदा वनों से यानी जंगलों से परंपरा के अनुसार कुछ विशेष पेड़ों का चयन किया जाता है। उन पेड़ों को काटने से पहले उनकी पूजा की जाती है, उनसे आशीर्वाद मांगा जाता है, जैसे मानो जैसे प्रकृति से इजाज़त ली जा रही हो। और सच कहूँ तो मुझे ये परंपरा बहुत ही खूबसूरत लगती है, क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि पेड़ सिर्फ हमें छाया या फल नहीं देते, कभी कभी वो अपने पूरे अस्तित्व को भी इंसानों के नाम कर देते हैं। और पेड़ों की बात चली है तो मुझे एक कहानी याद आ गई। ये कहानी है एक पेड़ और एक छोटे से बच्चे की। आज ये इसी कहानी को लेके आई हूँ मैं आपके लिए। देखते हैं ये सफ़र हमें कहाँ ले जाता है। सुनते रहिए FM Rainbow 101.9। मैं हूँ आपके साथ RJ मालविका।

0: ईरानी चाय,
1: बन मस्का,
0: हैदराबादी बिरयानी,
1: टंग दी कबाब,
0: कुर्बानी का मीठा,
1: शहदूद मलाई।
0: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
1: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
0: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्न ए हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
1: फ्रॉम 2 to 3 PM एवरी डे ऑन FM रेनबो 101.9।
0: इट्स नॉट जस्ट फूड,
1: इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इनटू वन।
0: जश्न ए हैदराबाद।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 101.9 और मैं हूं आपके साथ आरजे मालविका। दोस्तों, ज़माना बदल गया है। जहां हम पहले रेडियो सेट्स पर फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करते थे, वहीं आज हम ऐप्स और मोबाइल्स में गाने सुनते हैं। वक्त के साथ साथ आकाशवाणी ने भी 90 सालों में इस बदलते दौर में अपनी जगह बरकरार रखी है दोस्तों। और आज भी हम आपके लिए एक नए रूप में हाजिर हैं ताकि आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ न्यूज़ ऑन AIR ऐप की, जिसके ज़रिए आप जहाँ भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, हमारी आवाज़ आप तक पहुँच ही जाएगी। बस प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से न्यूज़ ऑन AIR ऐप डाउनलोड कीजिए और सर्च बॉक्स में FM रेनबो हैदराबाद टाइप करके हमसे जुड़िए। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस ऐप पर आप भारत भर के आकाशवाणी चैनल्स भी सुन सकते हैं। कितनी कमाल की बात है ना। लेकिन फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ। ये है आकाशवाणी हैदराबाद से FM रेनबो 101.9, रेनबो से लाइफ है रंगीन। और ये है अगला नगमा आपके लिए।

स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है। श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जिनकी संयुक्त जीडीपी लगभग 50 खरब अमरीकी डॉलर है। प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या

0: और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता, सुरक्षा और रक्षा साझेदारी को मजबूती से आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रसल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से ये बात कही। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ ने एक दूसरे के साथ इस विश्वास को विकसित किया है और अब इसे व्यापार तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बेल्जियम के ब्रसल्स में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ एसोचैम और अन्य क्षेत्रीय संघ के सदस्यों वाले भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस दौरान भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय उद्योग के लिए सृजित होने वाले नए अवसरों पर चर्चा की गई। इस समझौते से भारतीय व्यवसायों, लघु और मध्यम उद्यम तथा आम जनता को होने वाले फायदों पर भी विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच देश की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रुपए प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात पर कर बढ़ाकर 14.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपए प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सुबह लगातार किए गए जोरदार धमाकों के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियों को नुकसान पहुंचाया गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत समेत इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज सुबह के सत्र में 0.4% की बढ़त आई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 286 अंक बढ़कर 77,471 पर और निफ्टी 75 अंक बढ़कर 24,154 पर पहुंच गया। पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की 5वें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. National Security Advisor Ajit Doval has underscored the need for closer cooperation among BIMSTEC member countries to address economic challenges, including disruptions in global supply chains. Speaking at the 5th meeting of the BIMSTEC National Security Chiefs in New Delhi today, Mr. Doval said, disruptions in global supply chains have resulted in economic hardship for all the countries. He said, there is an urgent need for BIMSTEC member countries to collaborate, take decisive actions for the mutual benefit, and find solutions through mutual discussions. Mr. Doval highlighted BIMSTEC brings together the most significant and vibrant regions of the Indian Ocean with a combined GDP of nearly $5 trillion.
2: BIMSTEC's long-standing goals of regional security, connectivity, capacity building and economic security should continue to drive our collective efforts. For India, BIMSTEC represents our vision of neighborhood first, our commitment to ACT East policy and the Mahasagar

नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब और मैं हूं आपके साथ आरजे मालविका। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपके साथ आपके लिए एक कहानी ले आऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस कहानी को। तो ये कहानी है एक गांव में बसे एक छोटे से बच्चे और उसके साथ उसका दोस्त एक पेड़। तो कहानी यूं है दोस्तों, एक गांव के किनारे एक बहुत पुराने आम का पेड़ था। उसके नीचे रोज शाम को एक छोटा सा लड़का खेलने आया करता था। उसे हम लोग सोनू के नाम से बुला लेते हैं। तो कभी कभी वो उस पेड़ की शाखों पर चढ़ जाता था या पत्तों से ताज बनाकर पहन लेता था, या कभी कभी मिट्टी में बैठकर उसके तन से पीठ लगाकर कहानियां बनाता था। तो पेड़ तो कुछ नहीं बोलता था, लेकिन जब भी हवा चलती थी उसकी पत्तियां ऐसे सरसराती थी मानो जैसे वो हंस रहा हो उसकी कहानियां सुनकर। धीरे धीरे सोनू और पेड़ दोनों दोस्त बन गए। रोज मिलते और रोज कुछ ना कुछ नया करते। ना लड़के को पेड़ से कुछ लेना देना था, मतलब उसे कुछ पेड़ से किसी चीज़ की उम्मीद नहीं थी और ना ही पेड़ को लड़के से। बस उन दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगता था। लेकिन बचपन कब हमेशा रहता है ना, वक्त के साथ साथ बचपन भी गुजर ही जाता है। तो एक दिन लड़का बड़ा हो गया और फिर क्या हुआ, थोड़ी देर में लौटते हैं और जानते हैं आगे की कहानी।

तो दोस्तों, हमारी इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। याद है, काफी सालों बाद सोनू एक दिन उस पेड़ के पास फिर से वापस आया था। लेकिन इस बार वो बच्चा नहीं रहा। उसकी आंखों में सपने भी थे और चिंता भी। पेड़ ने हवा के साथ मुस्कुरा कर पूछा, इतने दिन बाद आए हो दोस्त? लड़का बोला, सोनू बोला, अब खेलने की उम्र नहीं रही है यार, मुझे अभी पैसे कमाने हैं। पेड़ कुछ देर चुप रहा, फिर उसने धीरे से अपनी शाखों को हिलाया, जैसे कह रहा हो, ये लो, ले जाओ, बेच देना, शायद तुम्हारे किसी काम आ जाए। उस साल पेड़ पर बहुत सारे आम लगे थे। ये देखकर लड़का खुश हो गया, सारे आम तोड़ कर ले गया। और फिर क्या, बहुत सालों तक वापस नहीं आया। पेड़ फिर भी रोज उसी रास्ते

की तरफ देखता रहा, उसी तरफ जिस रास्ते से सोनू उससे मिलने आया करता था। क्यों? शायद कुछ रिश्तों में इंतजार भी प्यार का एक हिस्सा हो जाता है। तो इसी इंतजार के नाम ये प्यारा सा नगमा आपके लिए।

वेलकम बैक दोस्तों, कहानी आगे बढ़ाते हैं और ये कहानी अपने आखिरी हिस्से पर आ चुका है। बहुत साल बीत गए, पेड़ अब पहले जैसा हरा भरा नहीं रहा था। एक दिन सोनू आया, वो भी बड़ा हो गया था, बुजुर्ग आदमी बन चुका था। फिर से उसके पास पेड़ के पास आया और इस बार कुछ अलग ही था। ना उसे पैसे चाहिए थे, ना फल, ना लकड़ी, बस उसे थोड़ी देर पेड़ के साथ बैठना था। पेड़ के पास अब बहुत कुछ बचा भी नहीं था, बस एक मजबूत सा तन था और थोड़ी सी छाया। सोनू चुपचाप उसके सहारे बैठ गया। दोनों कुछ नहीं बोले, बस अपने में ही गम मस्त मगन होके साथ वक्त बिता रहे थे। दोस्तों, कभी कभी खामोशी भी पुरानी दोस्ती की सबसे खूबसूरत जुबानी बन जाती है। और मुझे लगता है हम सब की ज़िंदगी में ऐसा कोई ना कोई पेड़ ज़रूर होता है। माँ बाप, दादा दादी, कोई टीचर या कोई दोस्त जो बिना हिसाब रखे सिर्फ और सिर्फ आपका साथ देता है और हमेशा आपके साथ रहता है। आज घर जाकर एक बार उनका शुक्रिया ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है वो शब्द उनके लिए सबसे बड़ा तोहफा हो। तो ये थी कहानी सोनू और उसके पेड़ की। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी हो।

ऑल राइट दोस्तों, अभी स्टूडियो क्लॉक में 12:36 हुए हैं एंड लेट्स इट्स टाइम टू हेड ओवर टू द स्पोर्ट्स डेस्क। जी हाँ, सबसे पहले एक कन्फेशन है। आज सुबह ऑफिस में अगर किसी को थोड़ी सी नींद आ रही हो तो उसकी वजह शायद मंडे ब्लूज नहीं है, जी हाँ, बल्कि फीफा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स है। मुझे पूरा यकीन है कि हैदराबाद का आधा हिस्सा कल रात सिर्फ 2 या 3 घंटे की नींद लेकर ऑफिस पहुंचा होगा, लेकिन ऑनेस्टली वजंट इट वर्थ इट गाइस। सबसे पहले स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर शानदार अंदाज में ग्रैंड फाइनल्स में अपनी जगह बना ली, और फिर उसके बाद जिस मैच का सबको बेसब्री से इंतज़ार था, इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना, और क्या मुकाबला था, है ना दोस्तों। आखिरकार अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली। इसका मतलब वर्ल्ड कप फाइनल में अब टकराएंगे स्पेन और अर्जेंटीना, राइट। और हाँ, लियोनेल मेसी की फेरी टेल अभी ख़त्म नहीं हुई है। अगर अर्जेंटीना बैक टू बैक वर्ल्ड कप खिताब जीते, वर्ल्ड कप जीतने से एक कदम की दूरी नहीं है, तो बताइए अगर मेसी एक और वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठा लेते हैं, क्या उन्हें फुटबॉल के अनडिस्प्यूटेड गोट कहना बिल्कुल सही होगा, या फिर आपको लगता है कि स्पेन इस कहानी का एंडिंग बदल देगा। देखते हैं क्या होगा। मैच है मंडे को 20 जुलाई रात 11:30 बजे। देखते हैं इस मैच का मुकाम कैसा रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, ये है FM Rainbow 101.9 और मैं हूँ आपके साथ RJ Malyavika।

वेलकम बैक दोस्तों। याद है बचपन में हम कितने सारे सवाल पूछते थे, है ना? ये आसमान नीला क्यों है? रेल की पटरी दो ही क्यों होती है? क्लाउड्स इतने बड़े होके भी गिरते क्यों नहीं? या फिर पता ही नहीं चलता कब हम बड़े हो जाते हैं और सवाल पूछना ही कम कर देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि क्यूरियस रहना शायद बड़े होने की सबसे खूबसूरत आदत है। क्यों? कभी किसी पुराने पेड़ को देखिए, सोचिए उसने कितनी पीढ़ियों को देखी होगी, है ना? कभी रेलवे स्टेशन पे खड़े होकर बस लोगों को देखिए, कितनी अलग-अलग कहानियाँ एक ही प्लेटफॉर्म से गुजर रही होती हैं। कभी किसी पुरानी बिल्डिंग की दीवार पर बने निशान को देखिए, हर वक्त हर एक चीज़ हर वक्त का एक गवाह होता है। ज़िंदगी तब और इंटरेस्टिंग हो जाती है जब हम सिर्फ देखते ही नहीं, ज़िंदगी इंटरेस्टिंग हो जाती है जब हम सिर्फ देखते ही नहीं बल्कि देखकर सोचते भी हैं। तो दोस्तों, आज का चैलेंज ये है आपके लिए कि आज कोई एक ऐसी चीज़ नोटिस कीजिए जिसके बारे में आपने कभी पहले सोचा ही नहीं था, और अगर कुछ इंटरेस्टिंग मिल गया तो हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट ट्रैक कमिंग अप फॉर यू, दिस इज़ आरजे मालविका फ्रॉम द स्टूडियोज़ ऑफ FM रेनबो 101.9।

वेलकम बैक दोस्तों, ये है एफएम रेनबो 101.9 और मैं हूँ आपकी आरजे मालविका गायत्री। अब वक्त है दोस्तों अब जिसका आपको सब बेसब्री से इंतज़ार था। जी हाँ दोस्तों, अब वक्त है हेलो रेनबो का, जहाँ हम आपसे सवाल पूछेंगे और उसी सिलसिले में आपसे रूबरू भी करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आप हमें 3 नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। वो नंबर्स हैं, पहला नंबर 0402323 0030, दूसरा नंबर है 0402323 4821 और तीसरा नंबर है 4004029704715। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर है 4023234822। और दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का सवाल आपको बताते हैं। तो दोस्तों आज का सवाल ये है, लेकिन सवाल पूछने से पहले मैं आपको एक किस्सा सुना दूँ। जी हाँ, एक और किस्से के साथ मैं आई हूँ आपके लिए। तो ये किस्सा है कि हाल ही में मेरी मुलाकात एक कैब ड्राइवर से हुई थी और बातों बातों में उन्होंने बताया कि लाइफ में उन्हें सिर्फ 2 चीज़ों से बहुत ही प्रेम था, और वो थी पहला सिनेमा और दूसरा ड्राइविंग। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बताया मुझे कि उन्होंने अपने सिनेमा के प्यार को पहले ज़माने में जिस तरह रील्स घुमाने पर मूवीज़ दिखाते थे थिएटर पे, तो उन्होंने बस

इसी काम में लग गए, तो वो इसी काम में लग गए और अपने सिनेमा के प्रेम को जताया। और दूसरी बात ड्राइविंग की, तो वो तो कैब ड्राइवर है ही, तो उन्हें ड्राइविंग करने में तो बहुत मज़ा आता था। तो दोस्तों लाइफ में ना हर बार हम जिस तरीके से प्लान करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो ही हो, वैसा ही हमारी लाइफ चले। लेकिन अगर बाय चांस अगर हमारी लाइफ हमारे प्लान के मुताबिक ना गई, तो उसको लेकर ज़्यादा बुरा भी नहीं लेना चाहिए, दिल पे नहीं लेना चाहिए। दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत से एग्जांपल मैं बताती हूँ धोनी का। धोनी तो आप सब ही जानते हैं ना, वास्तव में धोनी को फुटबॉल बहुत ही पसंद था, वो फुटबॉल प्लेयर बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने खेला खेल और आप तो सभी जानते हैं द रेस्ट इज़ हिस्ट्री, ही इज़ द गॉड ऑफ क्रिकेट टुडे। तो दोस्तों बस मेरा सवाल भी ऐसा ही कुछ है कि लाइफ में आपने बहुत कुछ सोचा होगा, आपने कुछ प्लान किया और कुछ और हो गया तो आपके करियर में, तो मेरा सवाल ये है कि अगर लाइफ में आपका आपके प्लान के मुताबिक अगर आपका लाइफ नहीं चला हो, तो आप कौन सा करियर चुनते हैं? आज आप चाहे बिजनेस चला रहे हो या फिर आप क्रिकेट प्लेयर हो, अगर वो नहीं होता तो आपका दूसरा करियर चॉइस कौन सा होता? बस यही सवाल है हमारा। लाइंस ओपन है, आप हमें कॉल करते रहिए। और हमारे नंबर्स आपको मैं फिर दोबारा से बता देती हूँ, हमारे नंबर्स है 0402323-0030, दूसरा नंबर है 0402323-4821, और तीसरा नंबर है 0402970-4715। जी हाँ, तो चलिए हमें कॉल करते हैं, तब तक हम एक गाना सुन लेते हैं और इस सेशन का मज़े लेते हैं।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct bore wells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.

0: कराई
1: मैं
0: कैसे
1: सोशल
0: हैं?
1: वर्कर करती हूँ, सोशल वर्कर ही रहना चाह रही
0: बहुत ही
1: मरे
0: बढ़िया
1: दम
0: मैम,
1: तक,
0: बहुत बढ़िया
1: बहुत सुकून मिलता।
0: जी मैम।
1: आप अच्छा कर रहे हैं शो, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं बोले ना।
0: जी मैम, फर्स्ट टाइम है
1: हाँ
0: मेरा
1: गुड
0: आज।
1: गर्ल गुड गर्ल, थैंक
0: थैंक यू सो मच मैम, बस ऐसे ही
1: यू
0: आपके
1: थैंक
0: हौसले के
1: यू,
0: साथ आगे बढ़ूंगी।
1: थैंक यू।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हमारे एक और कॉलर के साथ। हेलो रेनबो।
2: हेलो रेम्बो, गुड आफ्टरनून आदाब मालविका जी। जी
0: आदाब सर, कैसे हैं आप? आपका नाम?
2: शेर खान बोल रहा हूँ,
0: शेर
2: तालाब
0: खान
2: कट्टा
0: सर।
2: अमन नगर से।
0: जी सर, नमस्ते। और आपने आज का
2: जी
0: सवाल सुना सर?
2: जी सभी सुनने वाले भाई बहनों दोस्तों को सलाम आदाब प्यार भरा।
0: बहुत
2: अल्लाह से
0: करीब
2: दुआ
0: सर।
2: करता हूँ सबको हर हाल में हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सेहतमंद रखे। जी
0: जी सर।
2: माशाल्लाह बहुत अच्छा शो कर रहे हैं आप, बिल्कुल आरजे जेडी की याद दिला दिए। कल उन्होंने बहुत अच्छा शो कर रहे थे, उनकी तरह कहानी सुना रहे,
0: जी
2: बहुत
0: सर,
2: प्यारे आरजे हैं वो भी और आप भी बहुत अच्छे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, उनको बता
2: जी
0: दूंगी
2: जेडी
0: मैं।
2: भाई को भी मेरा प्यार भरा आदाब है।
0: जरूर सर।
2: और देखिए मैं मालविका जी,
0: जी सर।
2: वो तो कोई कुछ चाहता है कोई कुछ बन जाता है, बहुत सारे हैं ऐसे, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में भी कोई एक्टर बनना चाहता था, कोई डायरेक्टर बन गया, कोई डायरेक्टर बनना चाहता था, कोई एक्टर बन
0: एक्टर
2: गया।
0: बन गया। जी सर।
2: ये जिंदगी का रंगमंच ये है, हम जो चाहते हैं वो नहीं होता, हाँ हमको सिर्फ कोशिश करते रहना चाहिए, हम जो चाहे वो हो या ना हो उसके बदले हमारी तकदीर लिखने वाले ने लिख दिया है, और हमारी कोशिश पे ज्यादा डिपेंड करता है कि हम कोशिश किस तरह से कर रहे हैं।
0: जी सर।
2: कहते हैं ना सभी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता कहीं जमी तो कहीं आसमां नहीं मिलता, तो
0: बहुत खूब सर, क्या बात है।
2: इस तरह से अब मैं भी ब्लाइंड हूँ, मैं भी चाहता था बचपन में मैं कुछ करना चाह रहा था, मैं बनना चाह रहा था,
0: जी
2: लेकिन कुछ
0: सर।
2: घर के हालात की वजह से हमारे पेरेंट्स के वजह से मैं नहीं बन सका, लेकिन शायद नहीं होगा किस्मत में, तो जो भी है उस हाल में खुश रहना जरूरी है।
0: जी सर।
2: जिंदगी को कामयाब बनाना है तो समझौता कर लेना जरूरी है हालातों से,
0: जी सर, सही कहा आपने।
2: और जो चाह कोशिश करते रहना चाहिए, हाँ हमारी जायज तमन्नाएं रखना चाहिए, नाजायज नहीं रखना चाहिए, और खाली ख्याली पुलाव नहीं पकाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि मुझे ये बनना है मुझे ये करना है। कोई कोई वो बन भी जाता है, कोई उसके बदले में कुछ दूसरा बन जाता है, तो जो भी बनता है वहाँ पे शुक्र अदा करना चाहिए, सब्र करना चाहिए अगर कुछ दूसरा बन रहे तो, और शुक्र अदा करना चाहिए हर
0: जी
2: हाल में,
0: सर।
2: और बस अपनी जिंदगी को खुशनुमा रखना चाहिए।
0: जी सर, सही कहा, बहुत खूब सर,
2: और
0: थैंक यू।
2: मालनिका जी
0: जी
2: एक
0: सर,
2: गाने की रिक्वेस्ट है प्लीज।
0: कोशिश करेंगे सर। बताइए गाने का नाम।
2: हाँ फिल्म है मजबूर, अमिताभ बच्चन साहब की मजबूर फिल्म, किशोर
0: अच्छा
2: कुमार
0: सर।
2: की आवाज में है। आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है,
0: जी सर,
2: जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है।
0: जी सर, कोशिश करूंगी आपका रिक्वेस्ट प्ले करने की।
2: जी जी मुझे उम्मीद है आप जरूर मेहनत करेंगे कोशिश करेंगे, और ये गाना मिल गया तो बहुत अच्छा
0: जी सर,
2: इस
0: जी सर,
2: टॉपिक पे
0: जरूर
2: सूट हो
0: जरूर।
2: जाएगा। हाँ
0: जी सर, थैंक यू सो मच हमसे
2: ओके
0: जुड़ने के लिए।
2: शुक्रिया आप वक्त दिए, थैंक यू।
0: थैंक यू सर। तो दोस्तों, जैसे आपने सुना, शेर खान जी बता रहे थे कि कैसे हमें ज़िंदगी के हर मोड़ पर शुक्र अदा करना चाहिए और बस आगे बढ़ना चाहिए। और हमारे कॉलेज के साथ साथ हमें व्हाट्सएप में भी बहुत सारे लोगों ने, लिसनर्स ने हमें मैसेज किया है, तो देखते हैं वो कौन है। तो पहले है हमारे साथ जुड़े हुए गौतम जी हिमायत नगर से, और हमारे साथ जुड़े हैं अश्विन जी, जो कहते हैं, अश्विन जी फ्रॉम कोठी, जो कहते हैं जय श्री कृष्ण आपको भी सर। और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज भेजा है। वो कहते हैं कि जहाँ सिर झुक जाए वहीं ईश्वर का घर है, जहाँ नदियाँ मिल जाए वहीं समुंदर है। इस ज़िंदगी में दर्द तो सब देते हैं, जो दर्द को समझ सके वही हमदर्द है। क्या खूब बात कही है ना दोस्तों? तो बस इसी के साथ आगे बढ़ते हैं एक गाने के साथ, और फिर जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलेज के साथ। चलिए, सुनते रहिए FM रेनबो 101.9, और मैं हूँ आपकी मेज़बान माल्यविका।

0: Your ears.
1: Jashn e Hyderabad. Savor the city's soul.
0: तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे चार घंटे का ये सफ़र पता ही नहीं चला कब बीत गया। मैं हूँ आपकी मेज़बान माल्या विका और आपसे मैं इजाज़त लेती हूँ। तो फिर वक्त आने पर हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए ज़िंदगी के नगमों को अपनाइए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी को खुल के जिए। अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं इसी स्टेशन पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद से FM रेनबो 101.9। रेनबो से है लाइफ रंगीन।

0: 101.9 స్టూడియో క్లాక్ సమయం 4:03 అయింది. ఇప్పుడు వినండి సందేశ్ టు సోల్జర్స్.
1: నందన్ వందన్ అభినందన్ నమస్కార్ सुस्वागत आप सभी का कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स. संदेश टू सोल्जर्स के आज के संक में हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे सोल्जर, एक ऐसे सिपाही से जिसने अपनी कर्तव्य निष्ठा से अपने लिए, अपने देश के लिए हमेशा परचम लहराया है. आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह सहस्त्र सीमा बल से. सर्वप्रथम हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे आज के मेहमान हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह जी का. भागिंदर जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है.
2: थैंक यू मैम. जय हिंद मैम.
1: जी जय हिंद. और आप जैसे सोल्जर से सिपाहियों से जब भी हम मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा सीना जो है वो गर्व से फूल जाता है और हम ये महसूस करते हैं जैसे हम भी ना कहीं देश के प्रति अपनी कृतज्ञता यहाँ अपने कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञापित कर रहे हैं. और आपकी जो मंद मुस्कान है, प्यारी सी मुस्कान है, वो इस बात का सबूत है कि 20 सालों से आपने जो अपनी सेवाएं दी हैं सहस्त्र सीमा बल के माध्यम से देश के प्रति अत्यंत गौरवशाली रही होंगी. और आज हम अपने सभी श्रोताओं से साझा करना चाहते हैं कि 2005 में भागिंदर सिंह जी ने सहस्त्र सीमा बल में अपना पदार्पण कर अपने आप को वहां दर्ज कर अपने लिए एक मुकाम हासिल किया और इस मुकाम को, इस यात्रा वित्रांत को इन्हीं के माध्यम आज हम सुनेंगे. तो आपका हम पुनः स्वागत करना चाहते हैं भागिंदर जी, और आप ही से जानना चाहते हैं कि ये जो 20 सालों की जो यात्रा है कितनी सुखद रही है.
2: जी मैम. जय हिंद
1: मैम. जी जय हिंद.
2: सबसे पहले तो मैं एफएम रेनबो को अपनी पल की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं जो कि एफएम रेनबो के सभी कर्मियों को. मेरा जीवन बहुत सरल है मैम. मैं अपने गांव से, रामपुर भांगड़ से बिलोंग करता हूं, उत्तर प्रदेश, गौतम बुद्ध नगर जो कि जेवर के पास है. मेरा जीवन जो है प्राथमिक विद्यालय से शुरू हुआ, सरकारी स्कूल से, वहीं से मेरा जीवन स्टार्ट हुआ है. वहीं से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की. मेरे पापा जी जो है एक किसान हैं, मध्यम परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ. हम 2 भाई 2 बहनें हैं और मेरी पत्नी, 2 बच्चे.
1: वाह क्या बात है. सच में आपका जीवन बहुत ज़्यादा सरल है. पर यही कहूँगी कि आपकी सोच और आपकी सोच में जो आपके कर्म में है वो सर्वोपरि है और आपकी जो सोच है यही आपको सहस्त्र सीमा बल की ओर ले गई. आप सर्वप्रथम हमें ये बताएं कि क्या वो ऐसी बात थी जिसने आपको ये प्रेरणा दी कि आपको भी फौज में भर्ती होना चाहिए.
2: मैं बताना चाहूँगा, मेरे गाँव में पुराने समय से ही काफ़ी फौजी हैं. छोटा सा गांव है पर फौज में काफ़ी जो मात्रा में जो लोग हैं, जिसमें कि मेरे परिवार में से ही मेरे दादाजी, बाबा, 2 ताऊजी और मेरे जो है ताऊजी के चाचा जी के जो लड़के हैं, हम 5 भाई हैं. 5ों में से 4 जो है अपने जो है फौज में हैं मैम.
1: वाह क्या बात है. तो कहीं ना कहीं वो परिवेश था, यानी कि आपको कहीं ना कहीं ये अनुभूति पहले से हो गई थी कि आपके लिए वो रास्ता कौन सा है.
2: जी मैम बिल्कुल. ये जो है मेरे को प्रेरणा जो मिली है मेरे जो है ताऊ के लड़के थे उनसे, मेरे ताऊ जी से और गांव के जो फौजियों से, उनसे मिली है मैम. मेरे को भी दिल था कि मैं भी जो है ये जो कैमोफ्लाइज वर्दी पहन के आते हैं जो ये मैं पहनूँ और देश की सेवा करो.
1: वाह क्या बात है. तो निश्चित रूप से आप लगातार किस्से कहानियां सुनते होंगे और उन किस्से कहानियों ने कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि हमारे मन में एक सपनों का सागर बनने लगता है, तो सपनों के सागर की ओर आकर्षित आप उन किस्से कहानियों से जरूर हुए होंगे.
2: जी मैम. मेरे जो ताऊ जी थे वो फौज में थे, उन्होंने पाकिस्तान की लड़ाई देखी है तो पाकिस्तान के किस्से कहानियां सुनाया करते थे काफ़ी मात्रा में. जब जो 1962 में युद्ध हुआ था मैम, तो उसमें से जो है काफ़ी मात्रा में जो है हिंदुस्तान ने उनके जो सैनिक बंदी बनाए थे और लड़ाई जीती हैं. काफ़ी बार उन्होंने अपने बल का नाम रोशन किया है, हमारे जो ताऊ जी थे, तो उनसे बहुत प्रेरणा.

0: जी बहुत बढ़िया। तो जब आप वो किस्से कहानियां सुनते थे तो क्या रग रग में, कहते हैं ना कि आपके जो आपका जो लहू होता है उसका संचार और भी ज्यादा तेज हो जाता है, कैसा
1: जी
0: होता था आपके साथ?
1: जी मैम, जैसे ही मैं किस्से कहानियाँ सुनता था तो मेरे अंदर एक अलग ही जोश होता था। सुबह को उठना, 4 बजे उठना, एक्सरसाइज करना, दौड़ भाग करना कि बस अब फौज में ही जाना है, बस और किसी की तैयारी नहीं थी मैम, सिर्फ ओनली फौज।
0: वाह क्या बात है। तो उस वक्त आपकी उम्र बहुत कम रही होगी।
1: जी मैम, मेरी उम्र जो है, मैं 8वीं 7वीं से ही मैम जो है मैं फौज की तैयारी में लगा हुआ था। मेरा जो है गेम था, फिजिकल मेरे पहले से ही टफ था मैम। मैं कुश्ती और वेट लिफ्टिंग का बहुत शौकीन था मैम।
0: जी, तो हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद फिर आप फौज में गए,
1: जी मैम,
0: तो क्या प्रक्रिया रही, कैसे गए?
1: मैं जैसे किस्से कहानी सुनता था तो मेरी जो प्रक्रिया मेरे पापा जी से स्टार्ट होती है। मेरे पापा जी बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते थे, उनसे बोल देना तो मेरे को 3 बजे उठना है तो उनको यार रात में 4 बजे उठना पड़े, 5 बार उठना पड़े, 6 बार, वो मेरे को सिर्फ उसी टाइम पे जगाते थे मैम जब मैं उनसे बोलता था।
0: वाह क्या बात है। तो निश्चित रूप से जब आप सेलेक्ट हुए होंगे तो पिताजी तो बहुत खुश हुए होंगे, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि आपके ताऊजी के बच्चे, ताऊजी आपके
1: जी
0: बाबा
1: जी
0: सब फौज में रहे, लेकिन
1: जी
0: आप चार भाई बहन इनमें से कोई फौज में नहीं
1: जी
0: था। पिताजी खुद जो है उन्होंने देश का दूसरा कार्यभार संभाल रखा है। वो कहते हैं कि कृषि जो है हमारे जीवन का आधारभूत स्तंभ है,
1: जी
0: तो वो वहाँ मिट्टी से जुड़े हुए और आप फिर मिट्टी से फिर जुड़ गए देश के प्रति।
1: जी
0: तो उस वक्त उनके अंदर क्या चल रहा था कि बेटा अब सशस्त्र सीमा बल यहाँ अपनी सेवाएं देकर देश के प्रति अपने कर्तव्य निष्ठा निभाएगा?
1: मैम, मेरे परिवार में से किसी ना किसी घर में से 2 या 3, किसी के 2 लड़के हैं, 2 भी भर्ती उसी में सेना में, 3 है 3 भी, सिर्फ एक मेरा परिवार ऐसा था जो कि सेना में भर्ती नहीं था। उसके बावजूद मैम मेरे पापा जी को जब ऐसा लगा कि ये सेना में भर्ती हुआ है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे परिवार में खुशी की एक लहर दौड़ गई मैम, घर में, परिवार में, गांव में, तो उनको ऐसा लगा कि मेरे परिवार में से भी कुछ है। और जब मैं आ रहा था तो बोले बेटे कभी भी फौज में बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है, क्योंकि मैं सुनता भी रहता था कि इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती है, लोग जो है छोड़ना करते हैं, ऐसा मत करना जो है। तो मैंने पापा जी को आश्वासन दिया, मैं ऐसा कभी नहीं होगा,
0: वाह क्या
1: मेरे को
0: बात है,
1: देश से बहुत प्रेम है, मैं कभी नहीं आऊँगा।
0: वाह क्या बात है। हमारा जो वैल्यू सिस्टम है ना, फैमिली सिस्टम, इसकी खास बात यही है।
1: जी
0: जिस तरह से बेटियों को जो ब्याह जाता है, कहा जाता है कि जो जहां तुम जा रही हो वही तुम्हारा घर है, इसी प्रकार आपके पिताजी ने भी आपसे कहा कि
1: जी
0: वापस लौट कर मत आना,
1: जी
0: लेकिन शिद्दत के साथ ट्रेनिंग अपनी या तालीम अपनी पूरी हासिल करना। तो फिर बताइए कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ हुई, कितने अंतराल की थी और कितनी जटिल, कितनी मुश्किल थी?
1: मैडम, मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 2005 में दिसंबर 15 को, तो मेरी ट्रेनिंग का ज्वाइनिंग मैंने दिल्ली 25 बटालियन घटोरनी में करी थी 15 दिसंबर 2005 को। तो उसके बाद मेरी ट्रेनिंग पीनातोली उत्तराखंड में हुई मैम, तो 1 साल की ट्रेनिंग थी। 1 साल ट्रेनिंग के बाद मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी 18 बटालियन बीरपुर बिहार में।
0: वाह क्या बात है। और जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो कैसा लगता है, वो पल याद आते हैं? क्योंकि जब हम युवा होते हैं बहुत उमंग होती है, लेकिन अगर एक सिपाही की बात की जाए, एक सैनिक की बात की जाए, तो उसका जोश ना उतना का उतना रहता है। हम जितने भी ऑफिसर से मिलते हैं वो यही कहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा जीना चाहते हैं। तो जो 20 सालों का जो समय रहा है जिसमें आप अपना योगदान दिया है और अभी भी कर्तव्य निष्ठा के साथ कर्मठ सैनिक के रूप में आप कार्य कर रहे हैं, तो अभी भी क्या है महसूस होता है कि काश वो पल दोबारा से आ जाए, दोबारा से जिए उनको।
1: मैम, बचपन के पल वापस तो नहीं आते पर
0: जी
1: बहुत यादें जुड़ी रहती हैं, और काफ़ी मात्रा में मैं जो आपको बताना चाहूँगा, मेरी यादें काफ़ी जो है ऐसे काम करें जो मेरे को याद आते हैं।
0: वाह क्या बात है। निश्चित रूप से आपने जो भी कार्य किए हैं इन 20 सालों में और जो आगे भी करेंगे काबिले तारीफ रहेंगे, लेकिन उनके पीछे की सोच सिर्फ देश प्रेम है ना,
1: जी मैम
0: और
1: बिल्कुल
0: हमेशा जहन में ये चलता रहता हो कि देश के प्रति हमें कार्य करना है और देश का झंडा यूं ही लहराता रहे, इसके लिए हमेशा हमें कार्य करना
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल बिल्कुल मैम
0: तो जैसा कि इन्होंने खुद कहा, हेड कांस्टेबल भागेंद्र सिंह जी ने, कि बहुत सी यादें इनकी जुड़ी हुई हैं सशस्त्र सीमा बल से, बहुत सारी बटालियंस में आपने अपना योगदान दिया होगा, जगह जगह आपको डिप्लॉय किया गया होगा, उनसे जुड़ी हुई सारी किस्से कहानियां आज

0: आप सभी का पुनः स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है संदेश टू सोल्जर्स। और आज के इस अंक में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह जी सहस्त्र सीमा बल से। और इनकी कहानी बहुत रोचक है जिसे इन्होंने खुद ही बताया कि किस तरह से इनका बचपन इतना शानदार रहा है। जिसका बचपन इतना शानदार होगा उसका वर्तमान, और आगे चल के कहते हैं कि हमारा जो वर्तमान है वो हमारा भविष्य बनाता है। तो भविष्य तो सुखद ही होगा निश्चित रूप से, और सुखद उस व्यक्ति का जरूर होता है जिसे वो प्राप्त हो जाए जिसकी वो कामना करता है, क्योंकि जिसकी हम कामना करते हैं उसके लिए मेहनत भी बहुत करते हैं भागिंदर जी। क्यों, सच कहा ना? और आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ कि आपने मेहनत भी की, बहुत वर्जिश की, बहुत मेहनत करी, और ईश्वर की कृपा से आपको वो प्राप्त हुआ जिसकी कहानियां, जिससे जुड़ी हुई कहानियां आप बचपन से सुनते आ रहे थे।
1: जी मैम
0: जी, आप वर्तमान में 25वीं बटालियन सहस्त्र सीमा बल से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कौन कौन सी बटालियन से आप जुड़े रहे, और हर बटालियन की कुछ ना कुछ विशेषताएं रही होंगी, अलग अलग तरह के कार्यभार आपको दिए गए होंगे, वो सब बताएं हमें।
1: जी मैम, मैं सबसे पहले पोस्टिंग ट्रेनिंग के बाद 18 बटालियन बीरपुर बिहार में हुई। उसके बाद मैं फोर्स हेडक्वार्टर जो है डी जी टीम से कुश्ती के लिए क्लोज किया गया, तो मेरे को यहाँ पे गेम में काफ़ी दिन गेम में रहा। उसके बाद मेरे को जो है डेप्टेशन एनएजी के लिए डेप्टेशन हुआ, तो मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। एनएजी करने के बाद वापस मैं 18 बटालियन में आया। 18 बटालियन के बाद 35 बटालियन में आया, जिसमें कि जो है

0: उत्तराखंड में थी।
1: वाह क्या बात है। अच्छा ये बताइए, क्योंकि आपको तो जैसा कि मैंने स्वयं अभी कहा, आपने पहले कहा कि वेटलिफ्टिंग में आपको सम्मान प्राप्त हुआ, तो जो आप वर्जिश करते रहे, सेनाओं में रहते रहते आप करते रहे, और साथ ही साथ आप खेलों के प्रति भी आपका रुझान, जैसे कि वेटलिफ्टिंग में आपको गोल्ड मेडल भी मिला है,
0: जी
1: तो ये साथ साथ आप करते रहे और कितना समय निकाल पाते?
0: मैम, मैं जो है जब मेरे से ड्यूटी से समय मिलता था तो मैं अपनी प्रैक्टिस जारी रखता था। तो उसके बाद मेरे को मेरे बल ने मेरे को मौका दिया, मेरे को हेडक्वार्टर बुलाया और मेरे को टीम में शामिल किया। कंपटीशन करके मैं वहाँ पे आया तो मैंने अपनी SSB में अपने बल में गोल्ड मेडल प्राप्त किया मैम।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक प्रश्न जो है मैं भूल रही हूँ, मुझे लगता है कि उस प्रश्न को यहाँ ज़रूर पूछा जाना चाहिए, क्योंकि 20 सालों का यह सफ़र यादगार रहा है और आगे भी रहेगा। आपसे वो लोग मिलते होंगे ज़रूर जो आपके साथी होंगे, और कहीं ना कहीं कहते होंगे, कुछ ये कहते होंगे कि तुमसे प्रेरणा मिली, और कुछ ये कहते होंगे कि काश हम भी तुम जैसे बन पाए, ऐसा होता है?
0: हाँ मैम, काफ़ी लोग मेरे जो मित्र हैं बल के काफ़ी मिलते हैं और बहुत मतलब मेरा साथ देते हैं। बोलते हैं यार आपने जीवन में कड़ी मेहनत की है और आप इस लायक थे, काश हम भी आपके साथ होते। और बोलते हैं कि और वो होते उस टीम का हिस्सा तो हो सकता है मेरे से भी अच्छा करते हो।
1: वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। अच्छा वो लोग जो सीमा में, यानी कि सशस्त्र सीमा बल में आने से पहले, आपके वहाँ जुड़ने से पहले, वो साथी
0: जी
1: वो भी तो आपसे प्रभावित हुए होंगे या होते होंगे, कहते होंगे। कुछ साथी ऐसे भी होंगे कि जो आज जो खुद सेनाओं में हैं, कुछ खुद फौज में हैं,
0: जी
1: तो वो उन दोस्तों की क्या प्रतिक्रिया रहती है, और क्या सा समा था उस वक्त जब आप तैयारी कर रहे थे, आपके साथ में बहुत से लोग और तैयारियां कर रहे होते?
0: मैम, ज़्यादातर जो है हमारे गांव में से काफ़ी लोग होते हैं। लास्ट में जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, सभी भर्ती हो लिए थे लास्ट में मैं हुआ था। तो जितने भी तैयारी करते थे ज़्यादातर लोग सेना में भर्ती हो गए और कुछ थे जो हमारे साथी थे जो कि नहीं हो पाए। जैसे कि मेरा एक मित्र था योगेश शर्मा, वो जो है कोशिश भी किया पर भर्ती नहीं हो पाया।
1: तो उनके मन में मलाल रहा होगा कि काश हम भी तुम जैसे बन पाते, काश।
0: हाँ मैडम बिल्कुल बोलते हैं
1: अच्छा कुछ ऐसे
0: कि
1: भी होंगे ये बोलते होंगे कि तुम्हारी वजह से हम आज वहां हैं, हम भी आज सेनाओं का हिस्सा हैं, हम भी अपना गर्व से सीना चौड़ा करके चलते हैं, कुछ प्रेरणा स्रोत?
0: नहीं मैम, ऐसा साथ में बोलते थे कि क्यों हमारे जो साथी थे जो हमारे साथ दौड़ते भागते थे वो एक दूसरे का एहसान जरूर मानते। और कुछ हमारे जो सीनियर थे जो फौज में थे वो स्टॉप वॉच लेके मैम सभी को दौड़ाते थे। तो वो यादें बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि उनमें हमारे जो लगने में सिर्फ हमारा ही मेहनत नहीं, हमारे गांव के फौजियों का भी बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि उन्होंने भी हम पे काफ़ी मेहनत करवाया। स्टॉप वॉच लेके खड़े होना, फौज में क्या होता है, भर्ती की तैयारी कैसे की जाती है, ये सब कुछ बहुत मतलब
1: सुखद रहा है
0: जी
1: मतलब।
0: जी
1: अच्छा मैंने तो ये भी सुना है कि आप भी तैयारियां करवाते थे।
0: जी मैं जो शुरू से ही जो कुश्ती में और गेम में था तो जो मेरे कोच थे नेपाल पहलवान तो उनसे मैं कोचिंग लेता था। तो उसी प्रकार की मैं जो एक्सरसाइज वगैरह अखाड़े में इसमें करवाता था। तो उस प्रकार से मैं दौड़ भाग बताता था, इस प्रकार से करना है, डंडे ऐसे मारनी है, बैंड ऐसे करना है, सेटअप ऐसे लगाने। तो उस प्रकार की मैं जो है उनको ट्रेनिंग देता था मैम।
1: वाह, तो जो आप ट्रेनिंग देते थे उसके उपरांत जब उनके नतीजे आते थे निकल कर, तो कैसा महसूस होता था, और कितने दोस्तों को आपने ट्रेनिंग दी, और आपकी नियुक्ति कब हुई?
0: मेरी नियुक्ति 2005 में हुई थी
1: जी
0: मैम
1: ये तो आपने मुझे बताया,
0: जी,
1: तो क्या उन दोस्तों से पहले नियुक्ति हो गई थी, उनके बाद हुई?
0: उनके बाद में हुई मैम, मेरी
1: अच्छा
0: सबसे बाद में मेरी नियुक्ति हुई थी मैम। और जो है मैंने काफ़ी और ज़्यादा लगन से मेहनत करी, मेरे साथ के सभी लग गए जिनको मैं
1: सिखाता था।
0: सिखाता था वो लग गए। तो मेरे को और भी ज़्यादा लगन हुई मैम, मैंने और ज़्यादा कड़ी मेहनत करी और फिर जो है अपनी SSB बल में भर्ती
1: तो
0: हो गया
1: आपने अपने साथ साथ सबकी नैया पार लगाई,
0: जी।
1: यानी कि मास्टर जी।
0: नहीं मैं
1: हाँ
0: नैया तो नहीं खैर ये बोल सकता,
1: हाँ
0: जो हमारे उनका मेहनत थी उनका फल था मिला
1: बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत का फल जरूर व्यक्ति को मिलता है, अगर उसमें ये भावना हो कि

0: उसे प्राप्त करना है। और कहते हैं कि फौज तो वैसे भी आपको लक्ष्य को प्राप्त करना सिखाता है,
1: जी
0: अपने
1: मैम,
0: आप से लड़ना सिखाता है। और कहते हैं जब अपने आप से लड़ जाते हैं तो आप विजयी तो वहीं हो जाते हैं, और जब देश प्रेम की भावना हो तो बात ही कुछ और होती है।
1: बिल्कुल
0: तो आज हमारे साथ भागेंद्र जी हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद, जो हेड कॉन्स्टेबल हैं सशस्त्र सीमा बल में। इनके काम बहुत बड़े बड़े हैं, इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। भले ही इस बात का श्रेय ना लें, लेकिन हमारे लिए तो हम यही कहेंगे कि हर एक सैनिक, हर एक ऑफिसर जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से देश प्रेम मन में लिए, हमारे लिए दिन रात का चैन खोकर अपने प्राणों का भी ध्यान न रखते हुए अगर हमारे लिए मुस्तैद है, तो हम यही कहेंगे कि आप जैसा कोई भी नहीं। तो इन मिट्टी के रखवालों को हमारी ओर से सलाम, सलाम और सलाम। और जैसे कि मैंने कहा था कि भागेंद्र जी का तो जुड़ाव मिट्टी से बहुत गहरा है, क्योंकि पिताजी ने मिट्टी में से फूल उगना सिखाया है और इन्होंने उसी मिट्टी को तिलक बनाया है।

आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हवलदार भागिंदर सिंह जी, सहस्त्र सीमा बल से। और हमारे लिए बहुत ही सुखद पल है ये, क्योंकि आप जैसे सिपाहियों से, वीरों से जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं गौरवान्वित हम महसूस करते हैं।

0: कि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहां हर सिपाही अपने हाथ में अपने जीवन को लेकर चलता है, बिना सोचे समझे, बिना कुछ कहे, बस अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है और देश सेवा में अपने आप को समर्पित कर देश के प्रति अपने प्रेम को यहाँ दर्शाता है। आप सभी दोस्तों से गुजारिश है, अगर आपके मन में कोई भी बात हो, आप कोई भी बात साझा करना चाहें, भागिंदर सिंह जी कोई कोई संदेश देना चाहें, तो आप 9868107070 इस नंबर पर हमें संदेश भेज सकते हैं। फिलहाल हमारे पास बहुत सी बातें हैं भागिंदर सिंह जी से जानने के लिए, क्योंकि जैसा कि हम बार बार ही कह रहे हैं कि 20 सालों का यह सफ़र बहुत यादगार इनके लिए रहा है। बहुत सी बातें हैं, बहुत से किस्से हैं, बहुत सी कहानियां इनके जहन में ज़रूर होंगी जो साझा करना चाहेंगे हमारे साथ। लेकिन आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं यहाँ जानना चाहती हूँ। 10 जुलाई 2020 क्या हुआ था? क्या हुआ था जिसके बाद आप की चेहरे की जो मुस्कान मुझे बता रही है कि कुछ ऐसा जरूर हुआ था जिसने आज आपको और भी गौरवान्वित महसूस करवाया और आप उस बात का जिक्र बार बार करना चाहते हैं। क्या हुआ था 10 जुलाई 2020 को?
1: मैं आपको बताना चाहूंगा, 10 जुलाई 2020 को मैं झारखंड में पोस्टिंग था 35BN में। एक मैम, हमारी जो झारखंड में एक स्मॉल एक्शन टीम हुआ करती थी, उसका गठन जो है संजय सर ने किया था, IPS संजय सर ने, और हमारे बल ने SSB ने उसको बहुत सहारा था। हमारे जो बल की जो सबसे बड़ी नीम है हमारे डीजी साहब ने जो है अपनी SSB को जो है कई बार मौका दिया है ऑपरेशन करने का। और उसका तो ये ऐसा था मैम, जो झारखंड में जब हम गए थे तो झारखंड में माओवादी बहुत चरम सीमा पर थे, जो कि दुमका, पाकुड़, देवघर, ये जो है 4-5 जो ज़िले थे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। आम पब्लिक बहुत परेशान थी, लेवी वसूलना, आम पब्लिक को परेशान करना, फौज पर अटैक करना, ये काफ़ी जो है गतिविधियां होती थी वहाँ। तो ये 32 बटालियन थी जिसके जो है सर थे दीपक सर, वो भी थे उस ऑपरेशन में। संजय सर थे IPS IG संजय सर, और DIG सुमित जोशी सर थे, मनोरंजन पांडे कमांडेंट सर थे, और दीपक सर कमांडेंट, और ललित शाह DC डिप्टी कमांडेंट, नरपत सर डिप्टी कमांडेंट, ये काफ़ी जो है हमारी टीम के हिस्से थे, जो कि उनके द्वारा जो है ये ऑपरेशन किया गया। और इस टीम में जो है सबसे महत्वपूर्ण जो टीम का गठन किया था वो संजय सर ने किया था, कि कोई एक ऐसी टीम हो जिसे मैम इनका जो है नक्सलियों का सफाया करा जाए। तो उस टीम का नाम रखा गया सेट टीम, स्मॉल एक्शन टीम। तो स्मॉल एक्शन टीम जब उसका नाम रखा गया तो उसकी ट्रेनिंग भी बहुत हार्ड जो है करवाई गई, हर एक प्रकार के उसमें जो है ट्रेनिंग में, जो कि अच्छे बहुत अच्छे लेवल पे ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है, वो सब कुछ करा मैं
0: जी। अच्छा, फिर ये बताइए कि जब आपका सिलेक्शन हुआ, चयनित हुए, क्योंकि आपकी टीम में मतलब आपकी जो बटालियन थी उसमें बहुत सारे लोग थे, लेकिन आपका एक मेंबर के रूप में चयनित होना कितना गौरवशाली था? उस वक्त कैसा महसूस हुआ कि मेरा चयन हुआ है, मैं टीम का मेंबर हूँ, कैसा लगा आपको?
1: जी मैम, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा और खुशी भी होगी मैम कि इसके बारे में मैं बताऊँ। तो IG जो IPS IG संजय सर थे वो, और अपने जो है DIG सुमित जोशी, मनोरंजन कमांडेंट सर, ये अपना ललित सर 2IC, नरपत सर DC, ये सभी आते थे।

0: और उनकी सभी लोगों की ट्रेनिंग होती थी वहाँ, उनका टेस्ट लिया जाता था, उसके बाद उनका सिलेक्शन किया जाता था। तो मेरा जब सिलेक्शन किया था टीम में हमारे सर ने, सुमित जोशी सर ने, तो उन्होंने एक ही बात बोली थी कि ये जो है इंस्ट्रक्टर भी अच्छा है और जो है लीडर भी अच्छा बनेगा, तो इसको जो है एज ए इंस्ट्रक्टर और टीम का CHM बना दिया जाए।
1: वाह।
0: 2 नंबर टीम का मैम एक प्रदीप कुमार था जो मेरा मित्र था, वो 2 नंबर टीम का मैं CHM था, 1 नंबर टीम का CHM वो था।
1: वाह, बहुत खुशी हुई होगी। किस किस के साथ साझा किया कि मैं मेंबर हूँ? किसी के साथ साझा किया था उस वक्त?
0: नहीं मैम, ये साझा तो
1: नहीं
0: ऐसी
1: किया
0: चीज़ें नहीं
1: जाता उस
0: किया
1: वक्त,
0: जाता,
1: ऑपरेशंस के दौरान नहीं किया
0: मगर जो
1: जाता।
0: है,

0: ये साझा तो
1: नहीं
0: ऐसी
1: किया
0: चीजें नहीं
1: जाता उस
0: किया
1: वक्त,
0: जाता,
1: ऑपरेशंस के दौरान नहीं किया
0: मगर
1: जाता।
0: जो है टीम जो है एक ही माइंड के, एक माइंड सेट के, सभी की सोच एक सी हो, ऐसी टीम मिलना बड़ा मुश्किल
1: मुश्किल
0: है।
1: होता है।
0: जो कि हमारे बल ने ऐसी टीम को ढूंढा और सबको एकत्रित किया और टीम का हिस्सा बनाया। उसमें ऐसा मैं कभी हमें फील नहीं हुआ कि हमारे ऑफिसर्स जो हैं हमारे प्रति कुछ ऐसा हो। एक जगह रहना, एक जगह खाना, कभी ऐसा नहीं भाई की तरह रखना, बिल्कुल कोई भी वो नहीं। जो ट्रेनिंग एक जवान करता है वही एक ऑफिसर करता है, बराबर। जितना वर्क वो करता है उतना ही वर्क, कोई ट्रेनिंग में कोई कैसी भी जो भाईबंदी नहीं होती मैम।
1: बिल्कुल, एक टीम की तरह काम
0: और
1: करते हैं।
0: जी जिसमें कि मैम जो है आईजी जो संजय सर और डीआईजी सुमित जोशी सर ये रहते थे, तो उसमें कोई भाईबंदी की कोई गुंजाइश नहीं। वो कोई भी हो अपना 7-7 दिन की मैम हमारी जो है वहाँ पे जंगल ट्रेनिंग भी होती है, तो उसमें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें मैं बता भी नहीं पाऊँगा कि
1: जी
0: अंदरूनी।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: जी
1: अंदरूनी बातें हैं।
0: जी
1: और जब हम कहते हैं, जब आपकी फोर्स की बात होती है, तो बहुत सारे
0: जी
1: ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जिनको
0: जी
1: हम उनके सब हम उनका सिर्फ निर्णय हमारे सामने आता है कि विजयी रहे हैं और विजयी प्राप्ति प्राप्ति हुई है, लेकिन ऑपरेशंस की बात यहाँ नहीं कर सकते। निश्चित रूप से हम भी यही चाहेंगे कि
0: जी
1: आप अपनी फोर्सेस की या अपने बल की गरिमा को बनाए रखें। अब बात आती है कि 2024 में राष्ट्रपति द्वारा आपको पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित किया गया इस एंटी मायोस्ट ऑपरेशन के लिए। उस वक्त तो लगा होगा कि जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि सम्मान प्राप्त करना गौरव की बात तो होती है, लेकिन ये लगता है कि जब मेरा चयन किया गया, हमारी पूरी टीम विजय हुई है, सम्मान मिल रहा है, लेकिन जिम्मेदारी अब बढ़ गई है। उस वक्त क्या सोचा आपने?
0: मैम देखो, बहुत मेरे को खुशी भी बहुत ज़्यादा हुई और एक जिम्मेवारी भी बढ़ गई। जैसे ऐसा होता है ना मैम, जैसे कि आम का पेड़ होता है, जब आम आते हैं ना तो वो झुक जाता है, तो उसी प्रकार से मेरे को जितने भी मेडल लगे, जितनी DGDs मिली हैं, उसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। जब मैं डिसिप्लिन में रहूँगा तो हमारे जवान भी डिसिप्लिन में रहेंगे, तो जिम्मेवारी तो कहीं ना कहीं बढ़ती है मैम।
1: बिल्कुल, सम्मान हर्ष देते हैं, सुखद अनुभूति कराते हैं, गौरव महसूस होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब इन कंधों को और चौड़ा करके चलना है, और जैसा कि आपने कहा कि डिसिप्लिन में रहना है और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है। आपने एक बात और कही कि बहुत सारे सम्मान और आपको प्राप्त हुए हैं, ये भी बताएं हमें, क्योंकि हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, जिस वक्त आपको सुन रहे होंगे,
0: जी मैम,
1: आतुर हो रहे होंगे जानने के लिए, वो और कौन से सम्मान हैं
0: जी मैम,
1: जिनसे नवाजा गया आपको।
0: जी मैम, मेरे को पुलिस मेडल मिला है मैम, और आंतरिक सुरक्षा मेडल मिला है। डीजी साहब की तरफ से मेरे को सिल्वर DGDs मिली है, गोल्डन DGDs 1 स्टार, गोल्डन DGDs 2 स्टार, और प्रशंसा पत्र हमारे डीजी साहब ने, आईजी साहब ने, डीआईजी साहब ने, कमांडेंट सर ने, काफ़ी मात्रा में मेरे को जो है प्रशंसा पत्र भी मिले, काफ़ी जो है मेरे को नगद इनाम भी दिया गया है मैम।
1: वाह, क्या
0: जी
1: बात है। और आपके जो पदक हैं इस वक्त आपने धारण किए हुए
0: जी
1: हैं ठीक अपने वक्ष पर, तो वो जिस तरह से चमक रहे हैं ना, उनकी दीप्ति,
0: जी मैम,
1: उनकी चमक आपके चेहरे पर भी नजर आ रही है, और
0: जी
1: ये
0: जी
1: सच्चे देश प्रेम की गाथा है। शायद आप अपनी आंखों से ना देख पाए, लेकिन मेरे शब्दों के माध्यम से आप उस चमक को, उस दीप्ति को महसूस कर सकते हैं जब किसी सिपाही को, किसी सोल्जर को सम्मान दिया जाता है। और यकीन मानिए, ये सम्मान यूं ही अर्जित नहीं किया जाता, इसके लिए कर्तव्य निष्ठा चाहिए, देश प्रेम चाहिए, और बहुत सारी मेहनत चाहिए। और वो मेहनत और वो देश प्रेम आपके चेहरे पर आपके पदकों के साथ एक साथ खिल रही है। हम बहुत गौरवशाली महसूस कर रहे हैं कि आप जैसे व्यक्ति के साथ, आप जैसे सिपाही के साथ जो सशस्त्र सीमा बल में रह कर अपना योगदान दे रहा है, काबिले तारीफ है। तो एक नगमा हमारी ओर से आपके लिए, क्योंकि आप जैसे जो सिपाही हैं जो ये सोचते हैं कि हमें बस चलते रहना है, रुकना तो कभी सीखा ही नहीं
0: जी
1: है
0: बिल्कुल
1: ना,
0: मैम,
1: तो उनके नाम हमारी ओर से ये नगमा बहुत ही प्यारा है, कर्मा फिल्म का,

0: पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है संदेश टू सोल्जर। और आज का अंक हर बार की तरह बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह, सहस्त्र सीमा बल जिन्हें पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से भी सम्मानित किया गया और इसके अलावा कई पुरस्कारों से ये अलंकृत हैं। और हम यही कहेंगे कि आप जैसे सिपाहियों से जब हम रूबरू होते हैं तो कहीं ना कहीं मन में ये बात ज़रूर उठती है कि काश हम भी आप जैसे बन पाते, काश हम भी इस प्रकार देश की सेवा कर पाते। पर कहते हैं कि हर व्यक्ति को ईश्वर ने चुना है अपने अपने कार्यों को, कहते हैं ईमानदारी के साथ करने के लिए। तो जिस कार्य के लिए आपको चुना उसको आप बखूबी बहुत प्यार से सम्मान से निभा रहे हैं। एक बात बताइए कि कौन सा ऐसा कार्य था, कौन सी ऐसी बटालियन थी, कौन सा ऐसा रोल था आपका जो आपको लगा कि अगर ये ना मिलता तो शायद कुछ अधूरा रह जाता, कोई ऐसा है?
1: मेरा ये 35 से जो बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, जो कि वहाँ के जो कार्य थे काफ़ी जो है मेरी यादों में घुले मिले हैं।
0: जी जी, तो जब दूसरों से बात करते होंगे, बताते होंगे तो ज़रूर जिक्र करते होंगे, है ना?
1: बिल्कुल जिक्र करते हैं मैम।
0: अच्छा, एक बात बताइए मुझे, इन 20 सालों में बहुत सारे मिशन्स रहे होंगे जिसके आप हिस्सा रहे होंगे, उसके साथ साथ ट्रेनिंग्स भी आपके जो कहते हैं आपकी सर्विसेज में शामिल रही होंगी, तो किस किस तरह से आपको प्रशिक्षित किया गया लगातार जिससे कि आपको स्वावलंबी बनाया जा सके, जिससे कि आप सहस्त्र सीमा बल के लिए वो कहते हैं ना कि मजबूत, एक मजबूत सिपाही बन सकें, तो कौन कौन से ऐसी ट्रेनिंग्स जो आपको प्राप्त हुई?
1: जी मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले मैंने SSB में कमांडो कोर्स किया, उसके बाद जो है NSG ब्लैक हैट कमांडो कोर्स में गया, वहाँ पे एक कैप्सूल कोर्स चलता है NSG के अंदर, वो भी किया है। वहाँ पे मैंने PTI कोर्स भी किया और जो है PTI इंस्ट्रक्टर था NSG में, और VIP ड्यूटियाँ करी हैं।
0: वाह क्या बात है, तो निश्चित रूप से आपको बार बार ये महसूस होता होगा ना कि कुछ और नया अर्जित कर लिया, कुछ और नया सीख लिया, कुछ और नया दे दिया, ये नयापन हमेशा रहता होगा।
1: हाँ जी मैम, फौज में हर एक चीज़ जो नई होती है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और ना ही जब तक उम्र है आदमी खालीपन ही रहता है, बस सीखे जाओ सीखे जाओ।
0: वाह क्या बात है। अच्छा एक बात और बताइए कि सहस्त्र सीमा बल में आप अपना योगदान दे रही हैं और 20 सालों का सफ़र यादगार भी रहा, आगे आने वाले कहते हैं जीवन के लिए भी आपने बहुत कुछ सोचा हुआ होगा, निश्चित रूप से आप ये चाहते होंगे आप और सम्मान अर्जित करें और बड़े बड़े ऑपरेशंस का हिस्सा बने, लेकिन इनके साथ साथ कहते हैं कि व्यक्ति का जीवन में उसका परिवार, उसका पारिवारिक जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो ऐसे में अपने परिवार सबसे पहले कि सहस्त्र सीमा बल के प्रति जो आपका का कर्तव्य है, देश के प्रति कर्तव्य है, वो तो सर्वोपरि है, लेकिन उसके साथ साथ परिवार, इन दोनों के बीच कैसे भूमिका निभा कर चलते हैं और आपकी अर्धांगिनी का क्या योगदान है? क्योंकि कहते हैं कि हमारा जो स्पाउस होता है, जो हमारी अर्धांगिनी होती है या जो भी व्यक्ति हमारे जीवन में शामिल है, अगर वो ना हो तो शायद हमारे लिए काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, तो किस तरह से सामंजस्य बैठा पाते हैं आप?
1: मैम ऐसा है कि जो परिवार और देश कहीं ना कहीं दोनों ही सम्मान लायक हैं, पर मेरे लिए सर्वोपरि पहले मेरा देश है, उसके बाद परिवार है। मैं जब ड्यूटी करता हूँ तो बड़ी निष्ठा से, बड़ी ईमानदारी से अपनी ड्यूटियाँ निभाता हूँ, और जब मैं लीव पर रहता हूँ तो पूरा समय अपने परिवार को देता हूँ, और कहीं ना कहीं मेरे जब परिवार

0: साल है, तो मेरे को भी दिल करता है अच्छे जो देश की सेवा करूं, देश के प्रति समर्पित रहूं।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। अब आप हमें ये बताइए कि परिवार में कौन कौन है। वैसे तो आप अपने आपने बताया अपने भाई बहनों के बारे में, तो ये बताइए कि जब प्रथम बार अपनी अर्धांगिनी से मिले आप, तो उनसे क्या कहा आपने? क्योंकि आप फौज में, और कहीं ना कहीं अर्धांगिनी को बात समझानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि देखो देश पहले है, ऐसे में हो सकता है कि मैं तुमसे बहुत दिनों तक बहुत दूर रहूं। कुछ ऐसा उनके साथ साझा किया? कुछ कोई कहते हैं ना कि उनसे कोई प्रॉमिस लिया?
0: मेरे को मैम समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा पूरा परिवार ही जो है डिफेंस में है, उनके परिवार के भी काफ़ी डिफेंस में हैं, उनको पहले से पता था। पर फिर भी जो है एक रहती है, तो मैंने शादी से पहले पूछा था कि मैं फौज में हूँ तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उन्होंने पहले जो है बोल दिया मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जो मदर फादर कर देंगे वो मेरे लिए सब ठीक है।
1: अच्छा, ये बताइए कि आप आपके लिए कोई प्रेरणा स्रोत रहे और आपने किसी से प्रेरणा ली? अब बच्चों पर, जब बच्चों से आप बात करते हैं, बच्चों को किससे कहानियां सुनाते होंगे, तो आपके बच्चे आपसे क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं कि हम भी आपकी तरह बनना चाहते हैं?
0: जी मैम, मेरा बड़ा लड़का है जो है वो भी फौज में आने का इच्छुक है, जो कि अब 11वीं क्लास में पढ़ रहा है, तो उसकी बहुत रुचि है, वो NDA की तैयारी के लिए बोलता है और करने के लिए इच्छुक है।
1: वाह, क्या बात है। और हम यही कहेंगे, जिस तरह से आपने बहुत लोगों की नैया पार लगाई अपनी नैया के साथ साथ, वैसे बच्चों की नैया पार भी आप निश्चित रूप से लगाएंगे। और मैं तो ये कहती हूँ कि आपके गांव के जितने भी बच्चे हैं, वो आपको देखकर, ये गांव के और भी जो हमारे फौजी हैं, उनको देखकर वो ज़रूर प्रेरणा प्राप्त करें,
0: बिल्कुल मैम,
1: क्योंकि देश प्रेम से बड़ा प्रेम तो कोई और नहीं। और देश के प्रति अपना सम्मान दर्शाने के लिए शायद फौज से बेहतर कुछ भी नहीं।
0: बिल्कुल मैम, ऐसा नहीं है कि जो फौजी है, कोई भी देश का जहाँ भी जैसे भी है, जैसे FM रेंबो आप भी एक देश की सेवा कर रही हो,
1: जी
0: तो
1: शुक्रिया,
0: ये जो जहाँ भी जो भी है ईमानदारी से कहीं भी देश की सेवा की जा सकती है।
1: बिल्कुल, कहीं से भी देश की सेवा की जा सकती है। इस बात की मिसाल है हमारे लिसनर्स भी, जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं। संदेश हमारे पास आए हैं, यश शिंदे ने मुंबई से संदेश भेजा है, और इन्होंने कहा कि बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा शो हमारा चल रहा है, उसका सारा श्रेय भगिंदर जी आपको जाता है, क्योंकि जो बातें आपने साझा की वो हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत रहीं, और यही कहेंगे कि हमारे लिए एक याद बन गई, क्योंकि आपसे आज मुलाकात हुई, बहुत सारी बातें हुई। हेमंत कुमार यादव ने संदेश भेजा है, लिखते हैं, जय हिंद सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको, यानी कि आपको धन्यवाद यहाँ पे ज्ञापित कर रहे हैं। FM रेनबो को हार्दिक बधाइयाँ यहाँ पर लिख रहे हैं, कृपया हमारी ओर से आदरणीय भागिंदर सिंह जी को सादर जय हिंद अवश्य प्रेषित करें। और 28वीं वाहिनी SSB अंतागढ़ की PIT टीम की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं भेजी गई हैं। देखिए कितना सुखद पल है आपके लिए भी। अच्छा जी, आपके लिए संदेश आया है थाईलैंड से मिस्टर अमोल भवानी का, और इन्होंने भी आपको जय हिंद लिख यहाँ पर आपका धन्यवाद ज्ञापन किया है। संदेश हमारे पास आया है शंकर लोध का, द्वारका सेक्टर 15 ककरोला दिल्ली से। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त आपका भी, आपने संदेश भेजा, और आप सभी दोस्तों का जिन्होंने समय निकाला। यहाँ पर एक हमारे पास संदेश आया, यहाँ पर नाम ज़रूर नहीं लिखा गया है, हेलो सर लिखा गया है, लेकिन जो DP है उसे महसूस होता है कि आप भी सेनाओं में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त संदेश भेजने के लिए। भगिंदर सिंह जी, हमारे पास समय यहाँ पर कम है, लेकिन चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहते हैं उन युवाओं को जो फौज में भर्ती होना चाहते हैं, जो सेवाएं देना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि वो देश के प्रति अपने सम्मान को सेनाओं में, सेनाओं से जुड़कर ज्ञापित करें, क्या कहना चाहते हैं आप उन सभी के लिए?
0: अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, कहीं ना
1: जी
0: कहीं देश सेवा केवल एक नौकरी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है,
1: जी
0: और मैं यही कहना चाहूँगा सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। नौकरी ही नहीं, कहीं भी देश के किसी भी कोने में जो देश की सेवा करी जाती है ईमानदारी से, निष्ठा से, कहीं भी देश की सेवा कर सकते हैं।

0: जी, एक और संदेश हमारे पास आया है सीटी दीपक निगम का, दिल्ली 25th बटालियन से हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं भेज रहे हैं आपको दीपक निगम। तो हम यही चाहेंगे कि आप यूं ही अपना प्यार इस कार्यक्रम के प्रति दर्शाते रहें। और आज मैं बहुत उत्साहित हूँ, प्रसन्न हूँ संदेश टू सोल्जर्स के इस अंक के माध्यम से। हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह जी, सशस्त्र सीमा बल, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं, जिन्हें पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित किया गया, तो हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि आज आपके माध्यम से हमने इतनी सारी बातें आपके माध्यम से सुनी, आपका यात्रा वृत्तांत सुना। और मैं कहती हूँ कि आगे की ये जो यात्रा है और भी ज्यादा सुखद हो, कि जब अगली बार हम मिलें तो
1: जी
0: आपसे
1: बिल्कुल
0: और भी बहुत सारी बातें हों करने की, कहने की। तो एक गाना अंत में आपके लिए, जैसा कि आपने फरमाइश की थी कि लता
1: जी
0: मंगेशकर का एक नगमा यहाँ आपके लिए प्ले किया जाए, तो हम आप सभी वीरों के लिए, सभी फौजियों के लिए, हमारे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स हम ये कहेंगे कि उन सभी के लिए है, उन सभी फौजियों के लिए है जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं या सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन वो हमेशा हमारे दिलों में राज कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो आप सभी के लिए ये नगमा, और ख़ास तौर पर ये नगमा भागेंद्र जी के लिए हमारी ओर से। तो हम पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं भागेंद्र सिंह जी को। आपको बहुत बहुत धन्यवाद FM रेनबो के स्टूडियोज़ में आने के
1: थैंक यू
0: लिए,
1: मैम।
0: और हम यही चाहते हैं कि आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करें और इस कार्यक्रम को नित्य प्रति सुनते रहें, क्योंकि आप हमारे देश के सैनिकों की हौसला अफजाई इसी कार्यक्रम के माध्यम से कर सकते हैं। बहुत सारे संदेश आने शुरू हो चुके हैं, मैं माफ़ी चाहूँगी, समय यहाँ पर गुजर रहा है। GD राजेंद्र सिंह जी, 25th बटालियन, इन्होंने संदेश भेजा है, हार्दिक शुभकामनाएं भेजी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और जोया का मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से संदेश आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये आपके प्रति प्यार है जो देश से नहीं विदेश से भी बहुत संदेश हम तक पहुंच रहे हैं। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज शायद मुझे कोई इस शो को एंड करने नहीं देगा, क्योंकि संदेश इतने सारे आ रहे हैं। और हमारे पास संदेश है HC/GD बलविंदर सिंह जी का दिल्ली से, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का संदेश भेजने के लिए और हौसला अफजाई करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी भागेंद्र सिंह जी।
1: थैंक यू मैम।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

तेलुगु प्रोग्राम अभी आप सुन रहे थे। इस वक्त रात के 9:30 और 10 सेकेंड हुए हैं। अब आवाज होता है उर्दू प्रोग्राम नए रंग का।

आदाब अर्ज़ सामाइन, आप सुन रहे हैं 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर उर्दू प्रोग्राम नैरंग में आप तमाम का दिली खैर मकदम है। मैं हूं आपकी आजे नूर अफशां। आइए आज नश्र होने वाले प्रोग्राम्स की तफसीलात आपको बता दें। आगाज पर आप सुनेंगे हरफ ताबिंदा, इसके अलावा मुशायरा आप सुन सकते हैं,

0: गीत सुरीले गाता जा भी शामिल बज्म रहेगा और आखिर में आप सुन सकते हैं पयाम शब। तो चलिए हमारे आज के प्रोग्राम का आगाज हम करते हैं हरफ ताबिंदा से, पेशकश है एम ए हाई की।
1: इल्म से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं, जिसके पास इल्म होता है वो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाता है, अपने लिए मुख्तलिफ मौके तलाश कर सकता है। इल्म वो कुंजी है जिससे सारे मसाइल आसान हो जाते हैं। अपने माँ बाप और मुल्क को कौम का नाम रोशन करना चाहते तो खुद को इल्म के जेवर से आरास्ता करना चाहिए। दुनिया में बेशुमार मखलूकात हैं, लेकिन सिर्फ इंसान ही इल्म हासिल करता है, सही और गलत में फैसले और अच्छे बुरे में तमीज कर सकता है। इल्म ही इंसान को दूसरी मखलूकात से मुमताज करता है। दुनिया के तमाम मजाहिब ने हुसूल तालीम पर जोर दिया है। इल्म के मुतालिक अगर ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि जिसके पास इल्म नहीं इसके पास कुछ भी नहीं। असातेजा का हमारी जिंदगी में अहम रोल होता है, वो तालीम के साथ साथ हमारी तरबियत भी करते हैं, खुलूस व मोहब्बत और मेहनत से हमें पढ़ाते हैं और अपने तालिब इल्म को हमेशा कामयाब व कामरान देखना चाहते हैं। वालिदैन के बाद असातेजा ही होते हैं जो हमारे अच्छे और बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमेशा फिक्रमंद रहते हैं और हमारी खुशी में वो खुश होते हैं और हमारी परेशानी को वो अपनी परेशानी समझते हैं और उसे हल करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि इनका शागिर्द दुनिया में आफताब व महताब बनकर चमके और अपने बेहतरीन किरदार व अमल से पहचाना जाए। सामईन, आप जानते हों कि योम असातेज़ा 5 सितम्बर को मनाया जाता है। हमारे मुल्क के साबिक सदर जमहूरिया माहिर तालीम और फिलासफ़र सर्वपल्ली राधाकृष्णन सन 5 सितंबर सन 1888 ईस्वी को पैदा हुए। इनकी यूम पैदाइश को ही यूम असातेज़ा के तौर पर मनाया जाता है। समय असातेज़ा प्रिंसिपल तालीम याफ्ता बनाने और इनके मुस्तकबिल को संवारने की अहम जिम्मेदारी होती है। यूम असातेज़ा इसी सिलसिले की एक कड़ी होती है, यानी असातेज़ा जिस खुलूस और नेक नीयत के साथ बच्चों को तालीम देंगे बच्चे उतने ही काबिल और लायक तहसीन बनेंगे। इसलिए कहा जाता है कि उस्ताद के बाद उस्ताद का एहतराम करें, इनका कहा मानें, इनकी बातों पर अमल करें, इनकी हर बात को गौर से सुनें। इनकी बातें और नसीहत अगरचे आज आपको सख्त मालूम हो रही हों, लेकिन यही चीज़ें मुस्तकबिल में आपके लिए कामयाबी का सबब बनेंगी।
0: हरफ ताबिंदा अभी आप सुन रहे थे एम ए हाई से।

0: आप सुन रहे हैं 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर। तो नैरंग प्रोग्राम को आगे हम बढ़ाते हैं और अब हम आपको सुनाते हैं मुशायरा। शोरा हैं डॉक्टर फारूक शकील, सरदार सलीम और सरवर हाशमी।
1: मोहतरम सामईन, आदाब अर्ज है। नैरंग की महफिल मुशायरा में आपका खैर मकदम है। इस मुशायरे में हैदराबाद के मुमताज़ शुराए कराम ने हिस्सा लिया है, जिनके अस्माए ग्रामी यूँ हैं: डॉक्टर फारूक शकील, जनाब सरवर हाशमी, जनाब सरदार सलीम। सबसे पहले मैं सरदार सलीम साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो अपना कलाम पेश फरमाएं।
2: आदाब सामईन, कुछ ताज़ा कलाम पेश खिदमत है। गज़ल का मतलब समाप्त करें। अर्ज़ किया है कि तेरी खामोश निगाही ने कुछ कहा तो नहीं, तेरी खामोश निगाही ने कुछ कहा तो नहीं, बग़ैर हाथ लगाए मुझे छुआ तो नहीं, बग़ैर हाथ लगाए मुझे छुआ तो नहीं। शेर देखें कि हर एक बात पे ये कौन टोकता है मुझे, हर एक बात पे ये कौन टोकता है मुझे, मेरे वजूद में कोई मेरे सिवा तो नहीं, मेरे वजूद में कोई मेरे सिवा तो नहीं। इसे गुजारना मुश्किल है चंद आहों में, इसे गुजारना मुश्किल है चंद आहों में, ये उम्र है शबे फुरकत का रत जगा तो नहीं, ये उम्र है शबे फुरकत का रत जगा तो नहीं, इसे गुजारना मुश्किल है चंद आहों में, ये उम्र है शबे फुरकत का रत जगा तो नहीं। और ये शेर मुलाहजा करें कि मैं उससे खौफ ज़दा किस लिए रहूं आखिर, मैं उससे खौफ ज़दा किस लिए रहूं आखिर, अदू के हाथ में पत्थर है आईना तो नहीं, अदू के हाथ में पत्थर है आईना तो नहीं। और ये मख्ता मुलाहजा फरमाएं कि सलीम, रोशनी यक लख्त कैसे तेज हुई, सलीम रोशनी यक लख्त कैसे तेज हुई, हवा का हाथ दिए की तरफ बढ़ा तो नहीं, हवा का हाथ दिए की तरफ बढ़ा तो नहीं, तेरी खामोश निगाही ने कुछ कहा तो नहीं। और ये गज़ल मुलाहजा करें सामईन के, मतलब अर्ज़ करता हूँ कि अजब है सूरत हालात अब के, अजब है सूरत हालात अब के, हुई बरसात में बरसात अब के, हुई बरसात में बरसात अब के, अजब है सूरत हालात अब के। हुस्ने मतलब अर्ज़ कर रहा हूँ कि भरे हैं जहन में खदशात अब के, भरे हैं जहन में खदशात अब के, हैं सारे दोस्त मेरे साथ

अब के है सारे दोस्त मेरे साथ अब के। और ये शेर देखें कि बदन में फूल भी चुभने लगे हैं, बदन में फूल भी चुभने लगे हैं, बहुत नाजुक हैं एहसासात अब के, बहुत नाजुक हैं एहसासात अब के। अरे लगी है शर्त मेरे आंसुओं से, लगी है शर्त मेरे आंसुओं से, समंदर को मिलेगी मात अब के, समंदर को मिलेगी मात अब के। और ये शेर मुलाहजा करें कि बना दूंगा तेरे माथे का झूमर, बना दूंगा तेरे माथे का झूमर, लगा जो चांद मेरे हाथ अब के, लगा जो चांद मेरे हाथ अब के। और ये आखिरी शेर है इस गजल का कि जरा चौकन्ना चौकन्ना हूँ मैं भी, जरा चौकन्ना चौकन्ना हूँ मैं भी, है दुनिया भी लगाए घात अब के, है दुनिया भी लगाए घात अब के। सलीम अल्फाज बोदे लग रहे हैं, सलीम अल्फाज बोदे लग रहे हैं, है ऐसी शिद्दते जज्बात अब के, है ऐसी शिद्दते जज्बात अब के। और सामीन एक गजल से पहले दो शेर आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। देखें कि मैं जैसा सोचता हूँ काश वैसी जिंदगी होती, मैं जैसा सोचता हूँ काश वैसी जिंदगी होती, ये दिल पत्थर का होता और दुनिया कांच की होती, ये दिल पत्थर का होता और दुनिया कांच की होती। अरे चरागों से अंधेरा मिट न पाया करियाए गम का, चरागों से अंधेरा मिट न पाया करियाए गम का, कि मैं खुद को जला लेता तो शायद रोशनी होती, कि मैं खुद को जला लेता तो शायद रोशनी होती। और ये गजल मुलाहजा करें, मतलब किया है कि दिन भर की थकन जोड़ के रूमाल पे रख दूं, दिन भर की थकन जोड़ के रूमाल पे रख दूं, मिट्टी से सने हाथ तेरे गाल पे रख दूं, मिट्टी से सने हाथ तेरे गाल पे रख दूं। शेर देखें कि नाखून से तराशा था जहां तूने मेरा नाम, नाखून से तराशा था जहां तूने मेरा नाम, एक ख्वाब सा लम्हा मैं उसी डाल पे रख दूं, एक ख्वाब सा लम्हा मैं उसी डाल पे रख दूं, जुल्फों से तेरी फाल घटाओं का निकालूं, जुल्फों से तेरी फाल घटाओं का निकालूं, और नाम सितारों का तेरी चाल पे रख दूं, और नाम सितारों का तेरी चाल पे रख दूं। और ये शेर मुलाहजा करें, तू कह दे तो मैं डाल दूं रद्दी में किताबें, तू कह दे तो मैं डाल दूं रद्दी में किताबें, संदल की ये शाखें भी किसी टाल पे रख दूं, संदल की ये शाखें भी किसी टाल पे रख दूं। और ये शेर सुनाकर मैं आपसे विदा लेता हूं। देखें के हुक्के की सुबुक नए पे अजब जंग चढ़ा है, हुक्के की सुबुक नए पे अजब जंग चढ़ा है, फिर धो के इसे गांव की चौपाल पे रख दूं, फिर धो के इसे गांव की चौपाल पे रख दूं, दिन भर की थकन जोड़ के रूमाल पे रख दूं, मिट्टी से सने हाथ तेरे गाल पे रख दूं। मोहतरम सामईन, कुछ मुतफरी अशआर और पेशे खिदमत हैं। अर्ज किया है कि कई रंगों के हंसने और रोने रखे जाते हैं, कई रंगों के हंसने और रोने रखे जाते हैं, मैं वो शोकेस हूँ जिसमें खिलौने रखे जाते हैं, मैं वो शोकेस हूँ जिसमें खिलौने रखे जाते हैं। दिले नादा ये बस्ती बे नमक जज्बों की बस्ती है, दिले नादा ये बस्ती बे नमक जज्बों की बस्ती है, यहाँ आंसू

0: तू फकत पलकें भिगोने रखे जाते हैं, यहाँ आंसू फकत पलकें भिगोने रखे जाते हैं। और ये शेर मुलाहजा करें कि हमें जीने को दी जाती है कड़वी जिंदगी जितनी, हमें जीने को दी जाती है कड़वी जिंदगी जितनी, नज़र में ख्वाब उतने ही सलोने रखे जाते हैं, नज़र में ख्वाब उतने ही सलोने रखे जाते हैं। सफ़र दरिया के बीचों बीच आसानी से कटता है, सफ़र दरिया के बीचों बीच आसानी से कटता है। किनारे गालिबन कश्ती डुबोने रखे जाते हैं, किनारे गालिबन कश्ती डुबोने रखे जाते हैं। और ये बिल्कुल ताज़ा गज़ल के कुछ शेर पेश कर रहा हूँ, देखें कि मेरी आगोश पैरहन तेरा, मेरी आगोश पैरहन तेरा, तू मेरी रूह मैं बदन तेरा, तू मेरी रूह मैं बदन तेरा। बज्म सजती है जब सितारों की, बज्म सजती है जब सितारों की, नाम लेती है हर किरण तेरा, नाम लेती है हर किरण तेरा। शहर में भी हैं लड़कियां लेकिन, शहर में भी हैं लड़कियां लेकिन, मुझको भाए गंवारपन तेरा, मुझको भाए गंवारपन तेरा। अरे नकल तेरी उतारती है सबा, नकल तेरी उतारती है सबा, है हवाओं में बांकपन तेरा। और ये आखिरी शेर आपकी खिदमत में कि मेरी मंजिल है मेरे कदमों में, मेरी मंजिल है मेरे कदमों में, सर में सौदा है जाने मन तेरा, सर में सौदा है जाने मन तेरा। मेरी आगोश पैरहन तेरा, तू मेरी रूह मैं बदन तेरा।
1: अब डॉक्टर फारूक शकील से ख्वाहिश करता हूँ कि वो अपना कलाम सुनाएं। गज़ल पेश कर रहा हूँ, मतला मुलाहिजा फरमाएं कि सलीका मुझ में जीने का बहुत है, सलीका मुझ में जीने का बहुत है, मेरी फितरत में समझौता बहुत है, मेरी फितरत में समझौता बहुत है, और मेरे अंदर है कोई नफ्स दुश्मन, मेरे अंदर है कोई नफ्स दुश्मन, खता पर मेरी चिल्लाता बहुत है, खता पर मेरी चिल्लाता बहुत है, और सुकूने दिल ज़रा लाकर दिखाओ, सुकूने दिल ज़रा लाकर दिखाओ, तुम्हारे पास तो पैसा बहुत है, तुम्हारे पास तो पैसा बहुत है, और है खुफले मसलहत उसकी ज़ुबां पर, है खुफले मसलहत उसकी ज़ुबां पर, मगर आँखों से वो कहता बहुत है, मगर आँखों से वो कहता बहुत है, और किसी पर कैसे मैं उंगली उठाऊँ, किसी पर कैसे मैं उंगली उठाऊँ, और मेरा दामन भी तो मैला बहुत है, मेरा दामन भी तो मैला बहुत है, और तमाजत पी के भी देते हैं साया, तमाजत पी के भी देते हैं साया, घने अशजार में ममता बहुत है, घने अशजार में ममता बहुत है। आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाएं कि मियाँ हमने भी तो देखी है दुनिया, मियाँ हमने भी तो देखी है दुनिया, हमें भी तजुर्बा थोड़ा बहुत है, हमें भी तजुर्बा थोड़ा बहुत है। और मख्ता यूं है कि न फल आए शजर पर और न पत्थर, न फल आए शजर पर और न पत्थर, शकील आंगन मेरा सूना बहुत है, शकील आंगन मेरा सूना बहुत है, सलीका मुझ में जीने का बहुत है, मेरी फितरत में समझौता बहुत है। दूसरी गज़ल का मतला पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं कि वो जो हसास है बिल्कुल मेरे जैसा होगा, वो जो हसास है बिल्कुल मेरे जैसा होगा, उसकी आँखों से भी एहसास पिघलता होगा, उसकी आँखों से भी एहसास पिघलता होगा, और मसलहत ज़ादे सभी बैठे हैं चुप साधे हुए, मसलहत ज़ादे सभी बैठे हैं चुप साधे हुए, हम समझते थे कोई बोलने वाला हो।

होगा, हम समझते थे कोई बोलने वाला होगा, खुद से कमतर जो समझता है हर एक शायर को, खुद से कमतर जो समझता है हर एक शायर को, कम तरीका उसे एहसास सताता होगा, कम तरीका उसे एहसास सताता होगा, उस कदर उसकी यकीनन वहाँ बख्शिश होगी, उस कदर उसकी यकीनन वहाँ बख्शिश होगी, उसकी रहमत पे जिसे जितना भरोसा होगा, उसकी रहमत पे जिसे जितना भरोसा होगा, और सर को साहिल से जो टकरा के पलट जाता है, सर को साहिल से जो टकरा के पलट जाता है, दुख समंदर को किसी बात का गहरा होगा, दुख समंदर को किसी बात का गहरा होगा, फूल चेहरा है बदन फूल सा फूलों सी महक, फूल चेहरा है बदन फूल सा फूलों सी महक, उसका फूलों से करीबी कोई रिश्ता होगा, उसका फूलों से करीबी कोई रिश्ता होगा। और आखिरी शेर है कि फिक्र से तेरी निकलती है जो एक आँच मियाँ, फिक्र से तेरी निकलती है जो एक आँच मियाँ, जहन में कुछ तो यकीनन तेरे जलता होगा, जहन में कुछ तो यकीनन तेरे जलता होगा। मख्ता समात फरमाएं कि रिस रहा है जो शकील आँखों से उसकी पानी, रिस रहा है जो शकील आँखों से उसकी पानी, और दिल में शायद कोई छाला था वो फूटा होगा, दिल में शायद कोई छाला था वो फूटा होगा, वो जो हसास है बिल्कुल मेरे जैसा होगा, उसकी आँखों से भी एहसास पिघलता होगा। एक आखिरी गज़ल पेश कर रहा हूँ, मतलब मुलाहिज़ा फरमाइए कि सफ़र में साथ दुआओं की ढाल रखा कर, सफ़र में साथ दुआओं की ढाल रखा कर, खरीब आते नहीं हादसात घबरा कर, खरीब आते नहीं हादसात घबरा कर, और हिसारे ज़ात में रहकर सज़ा न दे खुद को, हिसारे ज़ात में रहकर सज़ा न दे खुद को, कभी कभी सही अंदर से अपने निकला कर, कभी कभी सही अंदर से अपने निकला कर, और खुदा का शुक्र के बेटी की हो गई शादी, खुदा का शुक्र के बेटी की हो गई शादी, मैं आज चैन से सोता हूँ पाँव फैला कर, मैं आज चैन से सोता हूँ पाँव फैला कर, अगर हो जलना मुकद्दर में बुझ नहीं सकते, अगर हो जलना मुकद्दर में बुझ नहीं सकते, हवा की ज़द पे चरागों को अपने रखा कर, हवा की ज़द पे चरागों को अपने रखा कर। आखिरी शेर समात फरमाएं कि रहेगा जिस्म में जब तक निज़ाम सांसों का, रहेगा जिस्म में जब तक निज़ाम सांसों का, हर एक जज्बे को अपने रखेंगे गर्मा कर, हर एक जज्बे को अपने रखेंगे गर्मा कर। मख्ता पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए कि तू धोना चाहे अगर दागदार दामन को, तू धोना चाहे अगर दागदार दामन को, शकील फूट के तन्हाइयों में रोया कर, शकील फूट के तन्हाइयों में रोया कर, और सफ़र में साथ दुआओं की ढाल रखा कर, खरीब आते नहीं हादसात घबरा कर। गज़ल का मतलब मुलाहिज़ा फरमाएं।

सरे शाम खुला हो जैसे, फिर कोई राह मेरी देख रहा हो जैसे, फिर कोई राह मेरी देख रहा हो जैसे, फिर दरीचा वो सरे शाम खुला हो जैसे, फिर कोई राह मेरी देख रहा हो जैसे, फिर कोई राह मेरी देख रहा हो जैसे। शेर देखिए, तवज्जो चाहता हूँ कि प्यार इखलास मुरव्वत से ये खाली दुनिया, प्यार इखलास मुरव्वत से ये खाली दुनिया, आज का दौर कोई खहरे खुदा हो जैसे, आज का दौर कोई खहरे खुदा हो जैसे। प्यार इखलास मुरव्वत से ये खाली दुनिया, प्यार इखलास मुरव्वत से ये खाली दुनिया, आज का दौर कोई खहरे खुदा हो जैसे, आज का दौर कोई खहरे खुदा हो जैसे। इस तरह उठती हैं सूरज की निगाहें सरे शाम, इस तरह उठती हैं सूरज की निगाहें सरे शाम, मुझसे वो अपना पता पूछ रहा हो जैसे, मुझसे वो अपना पता पूछ रहा हो जैसे। इस तरह उठती हैं सूरज की निगाहें सरे शाम, मुझसे वो अपना पता पूछ रहा हो जैसे, मुझसे वो अपना पता पूछ रहा हो जैसे। शेर देखिए कि मिलके खुश होते हैं यूं दोस्त पुराने मुझसे, मिलके खुश होते हैं यूं दोस्त पुराने मुझसे, कोई गंजीने मदफून मिला हो जैसे, कोई गंजीने मदफून मिला हो जैसे। मिलके खुश होते हैं यूं दोस्त पुराने मुझसे, कोई गंजीने मदफून मिला हो जैसे, कोई गंजीने मदफून मिला हो जैसे। शेर देखिए कि नीम बाज आंखों की मस्ती का ये आलम तौबा, नीम बाज आंखों की मस्ती का ये आलम तौबा, उफ नजारा ये दरे मैकदा वाह हो जैसे, उफ नजारा ये दरे मैकदा वाह हो जैसे। नीम बाज आंखों की मस्ती का ये आलम तौबा, नीम बाज आंखों की मस्ती का ये आलम तौबा, उफ नजारा ये दरे मैकदा वाह हो जैसे, उफ नजारा ये दरे मैकदा वाह हो जैसे। फिर देखिए कि चांद इटकेलियां करता है सियाह अब्र के साथ, चांद इटकेलियां करता है सियाह अब्र के साथ, कोई जुल्फों से तेरी खेल रहा हो जैसे, कोई जुल्फों से तेरी खेल रहा हो जैसे। चांद इटकेलियां करता है सियाह अब्र के साथ, कोई जुल्फों से तेरी खेल रहा हो जैसे, कोई जुल्फों से तेरी खेल रहा हो जैसे। यूं माफी के तलबगार खुदा के बंदे, यूं माफी के तलबगार खुदा के बंदे, अब कोई देर ही में हश्र बपा हो जैसे, अब कोई देर ही में हश्र बपा हो जैसे। यूं माफी के तलबगार खुदा के बंदे, यूं माफी के तलबगार खुदा के बंदे, अब कोई देर ही में हश्र बपा हो जैसे, अब कोई देर ही में हश्र बपा हो जैसे। शेर पेश करता हूं कि उनकी आहिस्ता खिरामी का ये आलम तौबा, उनकी आहिस्ता खिरामी का ये आलम तौबा, आप शारों के तरन्नुम की अदा हो जैसे,

0: और थे, ये लोग और हैं। पहले के लोग और थे, ये लोग और हैं, हम और इनसे दोस्ती, अल्लाह की पनाह। हम और इनसे दोस्ती, अल्लाह की पनाह। तपकर गमों की आग में तस्वीर जिंदगी, तपकर गमों की आग में तस्वीर जिंदगी, कितनी हसीन हो गई अल्लाह की पनाह। कितनी हसीन हो गई अल्लाह की पनाह। तपकर गमों की आग में तस्वीर जिंदगी, कितनी हसीन हो गई अल्लाह की पनाह। शेर पेश करता हूँ, तो चाहता हूँ कि आईना धोते धोते हुई जख्मी उंगलियां, आईना धोते धोते हुई जख्मी उंगलियां, चेहरे पे कितनी गर्द थी अल्लाह की पनाह। चेहरे पे कितनी गर्द थी अल्लाह की पनाह। आईना धोते धोते हुई जख्मी उंगलियां, चेहरे पे कितनी गर्द थी अल्लाह की पनाह। जलते तो हैं चराग मगर क्या तिलिस्म है, जलते तो हैं चराग मगर क्या तिलिस्म है। घर में नहीं है रोशनी अल्लाह की पनाह, घर में नहीं है रोशनी अल्लाह की पनाह। जलते तो हैं चराग मगर क्या तिलिस्म है, घर में नहीं है रोशनी अल्लाह की पनाह। तुम आ गए तो हो गया मौसम ये खुशगवार, तुम आ गए तो हो गया मौसम ये खुशगवार। आंगन में कितनी धूप थी अल्लाह की पनाह, आंगन में कितनी धूप थी अल्लाह की पनाह। शेर पेश करता हूं कि किसको खबर थी आहों से पिघलेंगी बेड़ियां, किसको खबर थी आहों से पिघलेंगी बेड़ियां, वहशत ये गुल खिलाएगी अल्लाह की पनाह। वहशत ये गुल खिलाएगी अल्लाह की पनाह। शेर पर तो चाहता हूं कि पहचानती है गर्दिश अय्याम ही मुझे, पहचानती है गर्दिश अय्याम ही मुझे, महफिल में सभी अजनबी अल्लाह की पनाह। महफिल में सभी अजनबी अल्लाह की पनाह। मख्तस कर रहा हूं कि सरवर चमन का आज है मंजर लहू लहू, सरवर चमन का आज है मंजर लहू लहू, आई बहार क्या नई अल्लाह की पनाह। आई बहार क्या नई अल्लाह की पनाह। मौसूम इस जमाने में है कत्लो खून से दुनिया ए अमनो आश्ती अल्लाह की पनाह, दुनिया में अमनो आश्ती अल्लाह की पनाह। ये बहरे गम ये जिंदगी अल्लाह की पनाह, बुझती नहीं है तशनगी अल्लाह की पनाह।
1: सामईन, इन मुशायरे का अख्ताम अमल में आता है। इस मुशायरे में हिस्सा लेने वाले शोराए कराम के असमाए ग्रामी यूं थे कि डॉक्टर फारूक शकील, जनाब सरवर हाशमी और जनाब सरदार सलीम।
2: मुशायरा अभी आप सुन रहे थे, शोरा थे डॉक्टर फारूक शकील, सरदार सलीम और सरवर हाशमी।

आप सुन रहे हैं 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर। चलिए हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब हम आपको सुनाते हैं आपका मनपसंद प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा। इसमें गीतों के साथ साथ कुछ बातें भी हम करेंगे, जैसा कि मैं हमेशा आपको कोई ना कोई कहानी सुनाती हूँ। आज भी मैं आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाने वाली हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ जज्बात की, यानी जज्बात जज्बात खुशी गम हर एक एहसासात जज्बात हर इंसान के पास होते हैं, लेकिन जैसा सभी जज्बात होते हैं, खुशी का इज़हार हम करते हैं, दुख का इज़हार हम करते हैं, गुस्से का इज़हार हम करते हैं, तो इसी पर यानी कोई भी चीज़ पर ये जज्बात पर काबू पाना बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर इस पर काबू ना पाया जाए तो यानी कोई भी काम सही नहीं हो सकता, कोई भी काम हम डिसिप्लिन से नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस पर काबू पाना जज्बात पर बहुत ही ज़रूरी होता है इंसान के लिए। इसी ताल्लुक़ से एक कहानी आप सब से मैं शेयर कर रही हूँ। एक सरसब्ज शादाब गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम था हसन। हसन बहुत ही ज़हीन मेहनती खुश अखलाकी था, लेकिन इसकी एक कमज़ोरी थी कि वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकता था। मामूली से मामूली बात पर उसे गुस्सा आ जाता, किसी की तारीफ सुनकर गुरूर में मुब्तला हो जाता, तो कभी नाकामी पर मायूसी से घिर जाता और खुशी में वो हद से बढ़कर खुश होता। ये सब इसकी कमज़ोरी थी। जज्बात पर काबू ना पाना इंसान की कमज़ोरी होती है, उसकी ताकत नहीं। उसके वालिद हमेशा नसीहत करते थे कि बेटा, इंसान की असल ताकत इसके बाजों में नहीं बल्कि इसके दिल और दिमाग में होती है। जो अपने जज्बात को काबू कर ले वो दुनिया की हर मुश्किल को आसान बना लेता है। ये सब बातें, ये नसीहत वालिद की हसन बहुत गौर से सुनता तो, मगर इनकी बातों को सुनकर वो खामोश हो जाता। उनको कुछ कहता नहीं, उनको कुछ जवाब नहीं देता, लेकिन वो उस पर अमल करने से कासिर था। उसे नहीं लगता था कि इन बातों पर अमल किया जाए और वो अपने जज्बात को काबू करने के बारे में सोचता भी नहीं था, कोशिश भी नहीं करता था वो।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा रहा। हम सुन रहे थे एक लड़के हसन की कहानी। एक दिन हसन ने शहर जाकर एक बड़ी कंपनी में मुलाजमत अख्तियार कर ली। शुरू में सब इसकी जहानत से मुतासिर हुए। वो वाकई ज़हीन था और जो भी काम करता था बहुत मेहनत और लगन से करता था, जिससे सब मुतासिर होते थे। शुरू में सब

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा रहा। हम सुन रहे थे एक लड़के हसन की कहानी। एक दिन हसन ने शहर जाकर एक बड़ी कंपनी में मुलाजमत अख्तियार कर ली। शुरू में सब इसकी जहानत से मुतासिर हुए। वो वाकई ज़हीन था और जो भी काम करता था बहुत मेहनत और लगन से करता था, जिससे सब मुतासिर होते थे। शुरू में सब यानी इसकी तारीफ करने लगे, इसकी तरक्की होने लगी, लेकिन जल्द ही इसके गुस्से और जज्बाती फैसलों ने इसकी मुश्किलात बढ़ा दी। अगर कोई साथी मामूली सी गलती कर देता तो वह सख्त लहजे में बात करता। अगर उसकी राय न कबूल की जाती तो वह नाराज़ हो जाता। नतीजा ये निकला कि इसके साथी इससे दूर रहने लगे। एक दिन दफ्तर में एक अहम मंसूबे पर काम हो रहा था। हसन ने पूरी मेहनत से अपनी तजवीज़ पेश की, लेकिन मैनेजर ने किसी और की तजवीज़ को पसंद कर लिया। जैसे ही यह सुनना था, हसन को गुस्सा आ गया। उसने सबके सामने तल्ख अल्फाज कह दिए और मीटिंग छोड़कर चला गया। इसके यही रवैये की वजह से मैनेजर ने दूसरे की तजवीज़ यानी कबूल की, क्योंकि वो जानता था कि यानी हसन काम तो बहुत अच्छा करता है, लेकिन वो अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सकता। अगर जज्बात पर अपने यानी गुस्से पर कोई काबू ना पाए तो उसको यानी लीडरशिप क्वालिटी उसमें बिल्कुल भी नहीं होती है। ये यानी ये बात सभी को मालूम थी और मैनेजर को भी यही बात मालूम थी।

गीत सुरीले गाते जा प्रोग्राम जारी है और हमारी कहानी भी जारी है। हसन की बात हम कर रहे थे तब उसे यानी गुस्से में आकर उसने मीटिंग छोड़ दी और चला गया। चंद दिन बाद उसे मालूम हुआ कि इसके रवैये की वजह से ही इसे तरक्की नहीं दी गई, उसकी तजवीज़ पर गौर नहीं किया गया। तब वो बहुत परेशान हुआ। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा नहीं बल्कि इसका अपना गुस्सा और जज्बात है। इसी दौरान इसकी मुलाकात एक बुजुर्ग उस्ताद से हुई। उस्ताद ने इसकी परेशानी सुनकर मुस्कुरा कर कहा, बेटा जज्बात समंदर की लहरों की तरह होते हैं, अगर तुम इन्हें रोकने की कोशिश करोगे तो वो मजीद जोर से टकराएंगे, लेकिन अगर तुम इन्हें समझदारी से संभालोगे तो यही लहरें तुम्हें साहिल तक पहुंचाएंगी। हसन ने पूछा, उस्ताद जी मैं अपने जज्बात पर काबू कैसे पा सकता हूँ? तब उस्ताद ने जवाब दिया, जब भी गुस्सा आए फौरन जवाब न दो, गहरी सांस लो, पानी पिया करो और चंद लम्हे खामोश रहो। जब खामोशी मिले तो यानी समझ लो कि तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया है, और जब खुशी मिले तो गुरूर ना करो। जब गम आए तो सब्र करो, क्योंकि हर रात के बाद सुबह ज़रूर आती है। हसन ने उन नसीहतों पर अमल शुरू कर दिया। इब्तिदा में ये बहुत मुश्किल लगा, कई मरतबा गुस्सा उसे आता लेकिन इसने खुद को खामोश रखा। जब कोई इस पर तनकीद करता तो फौरन जवाब देने के बजाय सोचता कि शायद इसमें वाकई कोई कमी होगी जिसे बेहतर बनाया जा सकता है। एक दिन दफ्तर में एक साथी ने इसकी फाइल गलती से ख़राब हो गई। पहले वाला हसन होता तो शायद चीखने लगता, लेकिन उस दिन इसने मुस्कुरा कर कहा, गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, आए मिलकर इसे दोबारा ठीक करते हैं। इसके नर्म रवैये ने सबको हैरान कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता इसके साथी इसका एहतराम करने लगे। दफ्तर का माहौल भी खुशगवार हो गया और कुछ अरसे बाद कंपनी में एक बहुत बड़ा बहरान आया। तब भी इसने सबका मिलकर साथ दिया।

ऐ शौक नज़ारा क्या कहिए, नज़रों में कोई सूरत ही नहीं। ऐ ज़ौक़ तसव्वुर क्या कीजिए, हम सूरत जाना भूल गए। इंसान जब दुनिया की मसरूफियात, ख्वाहिशात और फिक्री इंतशार में खो जाता है, तो उसकी निगाहों से ज़िंदगी का असल मकसद उछल होने लगता है। फिर ना उसे हुस्न हकीकत दिखाई देता है और ना दिल में वो पाकीज़ा तसव्वुरात बाकी रहते हैं जो इंसान को बुलंदी अता करते हैं। अगर दिल आईने की तरह साफ न रहे तो निगाहें भी हकीकत को नहीं पहचान सकती। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने दिल को ज़िक्र इलाही, नेक आमाल और अच्छी सोहबत और खुद एहतसाबी से ज़िंदा रखें, ताकि हमारी निगाहें भी हक़ को पहचाने और हमारा तसव्वुर भी खैर, मोहब्बत और सच्चाई से वाबस्ता रहे। जब दिल गफलत से भर जाए तो निगाहें भी हकीकत से महरूम हो जाती हैं। अपने दिल को पाकीज़ा रखें, अपने मकसद हयात को याद रखें, क्योंकि जिस दिल में याद हक़ ज़िंदा हो उसकी निगाह भी रोशन रहती है और उसका तसव्वुर भी पाकीज़ा होता है।

नदीम अख्तर जैदी से अभी आप पयाम शब सुन रहे थे। इसी के साथ आरजे नूर अफशां को दीजिए इजाज़त आज का प्रोग्राम नए रंग ख़त्म करने की। आप सुन रहे हैं 101.9 FM मेगाहर्ट्ज पर। इन्हीं मीटर्स पर हम आपसे दोबारा मिलेंगे कल रात 9:30 बजे। तो अपने जज्बात पे काबू रखिए और ज़िंदगी अच्छे से बिताइए। शब बख़ैर।

0: ये आकाशवाणी हैदराबाद है, आप सुन रहे हैं 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त रात के 11 बजने ही वाले हैं। कुछ ही देर में समाचार दिल्ली से प्रसारित होंगे।
1: भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे मिलाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बातचीत की और अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर इस्तीफा सौंपा। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 26,02,000 से अधिक जनगणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण हो चुका है। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू। ओडिशा के पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ में एक श्रद्धालु की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया है। अमेरिका ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक जहाज पर भी गोलीबारी की गई। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल किए। भारत ने कार्डिफ में खेले जा रहे दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में इंग्लैंड को 234 रन का लक्ष्य रखा है। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल मुकाबला रविवार को स्पेन में होगा।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद निखिल।
1: और अब आइए सुनते सबसे पहले मुख्य समाचार।
0: थैंक यू निखिल। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज एंड ऑन फ्लैट नोट। सेंसेक्स सेटल्स एट 77,187। निफ्टी ड्रॉप्स 6 पॉइंट्स। मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसीज क्लोज इन नेगेटिव जोन एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज।
1: घरेलू शेयर बाजार आज सपाट कारोबार के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 77,187 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 6 अंक नीचे आया। अधिकतर एशियाई शेयर बाजारों में आज गिरावट और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़े।

0: And before we begin the program, an important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Nikhil, over to you for the first story.
1: Yeah. घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों ने आज बिना किसी बड़े बदलाव के कारोबार किया। सेंसेक्स में केवल एक अंक की बढ़त हुई और ये 77,187 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 6 अंक गिरकर 24,073 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार के मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.1% की गिरावट आई। इससे पहले बाजार आज सुबह सकारात्मक रुख के साथ खुले और सत्र के पहले हिस्से में मामूली बढ़त के साथ कारोबार हुआ। हालांकि बाद के समय में दोनों सूचकांकों ने अपनी शुरुआती बढ़त गंवा दी। वर्तमान भू राजनीतिक अनिश्चितताओं, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और एशियाई बाजारों से मिले असंतोषजनक संकेतों के बीच निवेशकों का सतर्क रुख देखा गया।
0: Benchmark domestic equity indices ended on a flat note today. The Sensex added just one point to close at 77,187. The Nifty dipped 6 points to

0: बड़ा जोखिम आपको लगता है कि कोई हो सकता है, खासतौर पे ऐसे समय में जब निवेशक बहुत ही सतर्क रणनीति अपना रहे हैं, तमाम जो चुनौतियां हम देख रहे हैं जिनकी अभी हमने कुछ देर पहले बात की, जो भी परिस्थितियां हमारे सामने हैं?
1: निखिल, देखिए, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती अभी है वो इन्फ्लेशन है, क्योंकि जो वेस्ट एशिया में जो हालात चल रहे हैं और वहाँ पर ऑयल प्राइसेस अभी कंट्रोल में आ गए थे, फिर अचानक दोबारा से बढ़ गए, और हम देख रहे हैं कि भारत में उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है इन्फ्लेशन के ऊपर, तो और उसी से इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारी रिलेटेड है। अभी हमारे पास कुछ हेडरूम है, कुछ कम्फर्ट है, और हम उसको और अपने को मजबूत बना सकते हैं। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा चाइना के ऊपर। अभी हाल में चाइना के इकोनॉमिक नंबर्स आए हैं, दो या तीन दिन पहले आए हैं नंबर्स, और वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ उन्होंने, जबकि वहां पर देखिए गवर्नमेंट जो है, डेटा जो है गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, तो इतना आसान नहीं है उस पर भरोसा करना, पर उसके बावजूद भी चाइना ने इकोनॉमिक ग्रोथ 4.25% अपना जीडीपी ग्रोथ दिखाया, जबकि उनका लक्ष्य 5% था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना में जब 4% के आसपास इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है, और यदि भारत में हम 4.5-6% के साथ की उम्मीद रखते हैं, तो मुझे लगता है कि हम काफी अच्छा कर रहे हैं गिवन द एनवायरमेंट दैट वी आर
2: गिवन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द होल वर्ल्ड।
0: एक चीज अगर क्या हम जोड़ मतलब ये समझ सकते हैं कि निवेशकों का जो भरोसा है ऐसे में वो अभी भी उतना ही बना हुआ है जितना अब से ये जो संघर्ष इस साल हम जो देख रहे हैं इसके पहले जैसे बना हुआ था, या कुछ बदलाव आया है?
1: बिल्कुल, मैं ये कहूंगा जहां भरोसे का सवाल है तो भारतीय निवेशक, पर्टिकुलरली जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ही पैसा लगा रहे हैं, उनका भरोसा बना हुआ है और वो टिके हुए हैं। आप ये देखिए कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो काफी सेलिंग कर रहे हैं, और उसके सामने वो कोई बहुत बॉयंट मूड नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत तेजी में है या बहुत अग्रेसिव है। अगर आप म्यूचुअल फंड डेटा को देखें तो करीब 30,000 करोड़ रुपए नेट इन्फ्लोज अभी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आ रहा है, और ये एक स्टेबल नंबर है पिछले 6 महीनों से। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्वेस्टर्स जो है वो स्टेडिली इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज्यादा यूफोरिया में नहीं कर रहे और पैनिक में वो बेच भी नहीं रहे।
2: पर जब हम भरोसे की बात करें, जैसे भी आपने पुनीत कहा कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं भरोसा है उन्हें, would you say that a lot of that trust that we're talking about is also because of the fact that, like we just discussed right now, most of the happening, what the way the markets are behaving or reacting is because of geopolitical situations? When you look at the numbers in India, when you look at the situation, the way India's progressing, things are pretty steady and going in a very positive direction, and that's what probably is earning the trust of the investors, retail investors.
1: Absolutely. In fact, the way we have managed this difficult economic condition, I think, is quite commendable. The policies that the government followed to stabilize the economy, to keep inflation under control, relatively speaking. Yeah. I mean, inflation could have shot up like anything, like in many other Asian countries. So my guess is that people take comfort from that. And the truth is that the liquidity conditions, the economic conditions continue to be quite benign in India. There was a lot of apprehension that we will see, you know, a lot of pressure on consumption, a lot of pressure on inflation front. Fortunately, we haven't seen that.
2: Yeah.
0: पुनीत, क्या अभी आपको लगता है कि जो निवेशक हैं, घरेलू निवेशकों की हम बात करते हैं, तो अपेक्षाकृत अब वो सुरक्षित और बड़ी कंपनियों का रुख करने लगे हैं, खासतौर पर निवेश के संबंध में?
1: नहीं, देखिए निखिल, बड़ी मजेदार बात है ये कि पिछले दिनों यदि हम म्यूचुअल फंड फ्लोस की तरफ नजर डालें तो आप देखेंगे कि जो लार्ज कैप्स हैं उसमें इनफ्लोस अब कम है, और जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स है उन स्कीम्स में अब ज्यादा फंड फ्लोज आ रहे हैं।
0: लेकिन उसमें भी गिरावट आ रही है।
1: उसमें गिरावट देखिए उतनी नहीं है, और जब इन्वेस्टर्स मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा लगाते हैं और सस्टेन ढंग से लगाते हैं तो एक्चुअली वो सोफिस्टिकेशन का एक संकेत होता है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस है कि वो अब मिड कैप्स में स्मॉल कैप्स में निवेश कर सकते हैं। अदरवाइज अगर जो शुरुआती निवेशक होते हैं, स्टार्टिंग इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वो कंफर्ट ढूंढते हैं लार्ज कैप्स में, और इसलिए हम देखेंगे, अगर आप देखें तो इंडेक्स में उतना मूवमेंट नहीं आता है लार्ज कैप, जो हेडलाइन इंडेक्सेस हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप में काफी निवेश पिछले दिनों हुआ है।
2: सो लाइक यू सेड, इफ द रिटेल इन्वेस्टर इज इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप एंड मिड कैप, इज एक्चुअली साइन ऑफ मैच्योरिटी ऑफ आवर रिटेल इन्वेस्टर्स। यू नो दैट, लाइक यू सेइंग, इन द बिगनिंग एवरीबॉडी वुड लुक फॉर एट लार्ज कैप्स बिकॉज यू नो दैट इज वेयर यू गेट अश्योर्ड रिटर्न्स, बट इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स मिड कैप एंड स्मॉल कैप, दैट्स अ साइन ऑफ मैच्योरिटी,
1: दैट शोज मैच्योरिटी, दैट शोज कॉन्फिडेंस दैट पीपल हैव इन लार्ज, यू नो, नंबर ऑफ
2: इंडियन स्टोरी एज वेल। Right, let's move on to the next story. Tech Mahindra today reported its financial results for the first quarter of the current financial year, that is from April to June this year. The company's revenue increased by 17.7% on an annual basis to 15,712 crore rupees. On a sequential basis,

0: basis, the company's revenue grew by over 4.2%. The company's net profit rose by around 8.2% to 1,465 crore rupees on a quarterly basis.
1: एशियाई बाजारों की बात करें तो एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज गिरावट देखी गई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी लगभग 6.4%, जापान का निक्केई 2.8%, चीन का शंघाई कंपोजिट 1.8% से ज्यादा और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम लगभग 0.4% गिरा था, जबकि ताइवान का ताइएक्स बिना किसी बदलाव के बंद हुआ। इसके उलट हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 1.3% से ज्यादा बढ़ा था। इस बीच दक्षिण कोरिया के केंद्रीय बैंक ने पिछले 3 साल से ज्यादा समय में आज पहली बार अपनी मुख्य ब्याज दर को बढ़ाया है। मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के बाद बैंक ऑफ कोरिया ने इस दर को 2.5% से बढ़ाकर 2.75% कर दिया, जिसका उद्देश्य पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष की वजह से बढ़ महंगाई से निपटने के लिए मुद्रा आपूर्ति को कम करना है। इस साल मई और जून में कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन 3% से ज्यादा रही, जो बैंक के 2% के लक्ष्य से अधिक है। पुनीत, दक्षिण कोरिया की अगर हम बात करें तो जिस तरह का हमने ये बदलाव देखा, 3 साल से अधिक समय के बाद बदलाव आया, आंकड़ों के लिहाज से अगर देखें तो अमेरिका और इंडिया और चाइना के आंकड़ों का भी यहां पे ध्यान हमें रखना जरूरी है। तो इस कदम को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए किस तरह से आप देखते हैं, आपको क्या लगता है कि कैसा संकेत आने वाले समय में मिलेगा हमें?
2: देखिए, कोरिया का जो शेयर बाजार रहा है पिछले 2 वर्षों में, वो बहुत ही चौंकाने वाला बाजार रहा है। पिछले वर्ष करीब करीब 2.5 गुना वहां पर इंडेक्स में तेजी आई और इस वर्ष ऑलरेडी करीब 1.5 गुना तेजी आ चुकी थी। तो कोरिया का बाजार में एक अद्भुत, मैं कहूंगा, तेजी रही। और उसका खास कारण यह रहा कि वहां पर जो चिप, मेमोरी चिप बनाने के जो स्टॉक्स हैं, उसकी एक दो कंपनी है, बड़ी कंपनी, और वो उनका वेटेज बहुत ज्यादा था, और उसमें बहुत ज्यादा निवेश हुआ, और इसीलिए वहां पर वॉलिटिलिटी बहुत है। आज 6.5% आपने बताया कि इंडेक्स गिरा, थोड़े दिन पहले 7% बढ़ गया था, उससे पहले वो एक दिन 10% गिर के वहां पर सर्किट लग गया। तो इतना बहुत वॉलिटाइल मार्केट है, लेकिन बहुत बड़ी मार्केट है, ऐसा नहीं है कि वो कोई छोटी मार्केट है, लेकिन नैरो मार्केट है। उसके अपेक्षा में हम देखें तो जो बाकी जो बाजार हैं वो थोड़े डाइवर्सिफाइड रहते हैं, पर फिर भी उसका असर भारतीय बाजारों में पड़ता है, क्योंकि जब हम इमर्जिंग मार्केट्स कंपैरिजन करते हैं तो अगर कोरिया का बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भारतीय बाजारों से आता है। एफआईआई पैसा निकालकर वो कोरिया में या ताइवान में या जापान में इन्वेस्ट करते हैं। मेरा खुद अपना अनुमान है कि जैसे जैसे हम देखेंगे कि जो एशियाई ये बाजार है, कोरिया, जापान, ताइवान, वियतनाम, हमने इनकी बात करी, ये जैसे जैसे बाजारों में गिरावट आएगी, वहां पर कॉन्फिडेंस कम होगा फॉरेन इन्वेस्टर्स का, तो हम वो पैसा देखेंगे कि भारत में आएगा। तो मैं उन बाजारों को बहुत ध्यान से देखता हूं, क्योंकि वहां पर जो ट्रेंड है उसका रिवर्स ट्रेंड एक्चुअली भारतीय बाजारों में हम देखने को मिलता है हमें, तो ये हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण है। लेकिन वहां पर अभी वॉलेटाइल है और मुझे लगता है कि कमजोरी रही।
1: लेकिन जिस तरह से ब्याज दर बढ़ाने की बात है, जहां तक अगर थोड़ी सी बढ़ती हो तो उसका असर पड़ता है खासतौर पर पूंजी जुटाने के लिए,
2: और वो तो बहुत नेगेटिव है। अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू होता है, जैसे कोरिया में उन्होंने बढ़ाया सेंट्रल बैंक ने, तो वो साफ एक संकेत है कि वो इकोनॉमिक स्लोडाउन लाना चाहते हैं। वहां पर ज्यादा ग्रोथ हो रही है, एसेट प्राइसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो वहां सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक जो है वो अपना रेट कम कर, ग्रोथ कम करना चाहती है, तो हमारे लिए बेहतर है, पर डेफिनेटली उसका नेगेटिव इंपैक्ट आएगा।
0: पुनीत, लाइक यू सेड, यू नो इंडेक्सेस लाइक द साउथ कोरियन कोस्पी एंड अदर, वेयर इफ यू टॉक अबाउट साउथ कोरियन कोस्पी, द वेटेज ऑफ सर्टन कंपनीज व्हिच आर एसोसिएटेड विद चिप मैन्युफैक्चरिंग, यू नो दैट very big percentage or very the weighted is very big. So when you compare it to Indian, you know, indices, whether it's Sensex, do you think it's actually a good thing that, you know, indices like Sensex and NSE, they are not completely, you know, being dominated by a certain sector or by a certain, you know, kind of market, so to speak?
2: Anubha, I think this is one of the strongest points which will really help Indian markets raise capital in the long term. Huh. We are a very, very diversified economy. It's not, we are not, Kospi, for instance, has weightage of 55% from just 2 companies.
0: Yes.
2: Only 2 companies contribute 55% to the index weightage.
0: Yeah.
2: So what kind of money would one invest in that economy?
0: Yeah.
2: Because you are concentrated investment only in 2 companies. In India, we have more than 7,000 listed companies. Our indices are very strong. Even within the indices, you will see very wide diversification of sectors. So you will have banking, you will have healthcare, you will have telecom, you know, all kinds of sectors are there, and there are substantially large companies. So I think in long term, foreign investors or all kinds of investors will find much more comfort investing in India. They'll have many more choices to invest in other markets, which are narrow markets. They may make money in the short term, no?
0: Yes.
2: So they try to make hay in the last couple of years,
0: yeah.
2: But I think in longer term they will definitely come to India. And what we saw was last 2 years they pulled money out of India, they put it in those momentum markets.

0: Yeah.
1: But eventually, for the long-term growth, they will have practically no choice other than India to invest in.
0: And the next news from Nikhil.
2: जी, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि देश के वित्तीय समावेशन सूचकांक यानी एफआई इंडेक्स में सुधार हुआ है। ये सूचकांक मार्च 2025 में 67 से बढ़कर मार्च 2026 में 70 तक पहुंच गया है। बैंक के अनुसार ये बढ़ोतरी दर्शाती है कि भारत वित्तीय सेवाओं का दायरा बढ़ाने और लोगों को वित्तीय गतिविधियों से जोड़ने में लगातार प्रगति कर रहा है। इससे पता चलता है कि देश के नागरिक अब बैंक खाता रखने के साथ साथ डिजिटल आधारभूत ढांचे, ऋण और बीमा उत्पादों का भी काफी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सूचकांक बिना किसी आधार वर्ष के 97 संकेतकों को परखता है और 3 मुख्य पैमानों पर देश की वित्तीय व्यवस्था का मूल्यांकन करता है। हालिया बढ़ोतरी उपयोग और गुणवत्ता में बड़े सुधार को दिखाती है। बैंक ने कहा है कि ये सुधार मुख्य रूप से वित्तीय सेवाओं के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से हुआ है, जो वित्तीय समावेशन के सशक्त होने का संकेत है। इनमें उपयोगकर्ताओं की बढ़ती संख्या की हिस्सेदारी 35%, इस्तेमाल करने की 45% और गुणवत्ता की 20% शामिल है। ये सूचकांक पहली बार अगस्त 2021 में मार्च 2021 को खत्म होने वाले वित्त वर्ष के लिए पेश किया गया था और इसे हर साल उपलब्ध कराया जाता है। तो पुनीत जी, जिस तरह से आंकड़ों की बात है, आंकड़े बढ़ रहे हैं, सुधार हमें नजर आ रहा है और भारतीय रिजर्व बैंक भी ये बात कह रहा है, तो लोगों को निवेश की दृष्टि से अगर जोड़ा जा रहा है तो कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को आर्थिक रूप से और ज्यादा मजबूती देने के लिए डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स लगातार उसमें उन्नति कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, जिससे देश की प्रगति भी हो रही है।
1: निखिल, देखिए, पिछले 10-12 वर्षों से यदि आप सरकार का पूरा प्रोग्राम देखें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन उसका एक सेंट्रल पिलर रहा है। हम डिजिटाइजेशन की बात करें, चाहे व्यापार की बात करें, चाहे हम सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात करें जनता को, तो उसका जो आधार है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन में है। यानी जो प्रधानमंत्री ने शुरुआती अपने बिल्कुल जब उनकी टर्म शुरू हुई थी तभी उन्होंने कहा था जैम, जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल। और अगर आप देखें तो सारा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो उसका एक सेंटर पीस है। और बड़ी मुझे खुशी होती है जब मैं देखता हूं कि छोटे छोटे गांवों में बहुत दूर दराज जो बिल्कुल इनएक्सेसिबल एरियाज थे, वहां भी चाहे और सुविधाएं पहुंचे ना पहुंचे, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वो अपने मोबाइल से अपना काम कर पाते हैं। जो वर्कर्स इमिग्रेंट्स हैं काम कर पाते हैं, वो सैलरी घर भेज पाते हैं। एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है भारत जैसे देश में जहां पर बहुत रूरल पॉपुलेशन है और इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना बहुत मुश्किल था। अगर आप वहां ब्रांच बैंकिंग करना चाहेंगे या वहां पर कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग करना चाहेंगे बहुत मुश्किल थी, पॉसिबल ही नहीं थी। तो डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन हैज बीन अ रेवोल्यूशन और ये भारत का जो मॉडल रहा है, आप सब हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल है एंड दे आर ऑल ट्राइंग टू फॉलो।
2: इसमें स्टार्टअप्स की क्या भूमिका है, इस पर आप क्या कहेंगे?
1: ये बहुत बड़ी भूमिका, देखिए ये बात तो सही है कि जो स्टार्टअप्स ने जिस प्रकार से इसको फैलाया है पूरे देश में, आप एप्स की बात करें, फिनटेक कंपनीज की बात करें, आप पेमेंट गेटवेज की बात करें, यूपीआई की बात करें, तो इसको जो एक मैं कहूंगा एक विजन थी प्राइम मिनिस्टर की और एक विजन थी सरकार की कि लोगों से जोड़ना, वो सरकारी तंत्र अपने आप नहीं कर सकता था, उसमें प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल था और उसको पूरा निभाया है प्राइवेट सेक्टर ने। पर्टिकुलरली जो स्टार्टअप्स हैं, छोटी कंपनीज हैं, एंटरप्रेन्योर्स की कंपनीज हैं, अगर आप क्विक कॉमर्स की बात करें
2: जी,
1: मतलब इसके ऊपर तो आप समझिए कि हम कितना ही लंबी बात कर सकते हैं और ये हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई, हम देखते हैं कि कितना बड़ा इसका असर आम आदमी के जीवन पे पड़ा है।
0: पुनीत, यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट द इंप्रूवमेंट इन द inclusion index and when we're talking about financial inclusion, financial literacy, how big a role and how crucial is it when, you know, we talk about we have a vision, the Prime Minister has a vision of Viksit Bharat by 2047. How crucial is the role of this financial inclusion and the improved financial literacy in that, in achieving that?
1: So Aluba, what we need to realize is that financial inclusion is the only way that we can lift people out of poverty. See, the financial inclusion wasn't really meant to, it of course it has benefited everybody, people in the upper strata of society with higher incomes, with more prosperity, but financial inclusion is a crucial differentiator for people at the bottom of the pyramid. It is they who have been able to utilize their money, save their money, invest their money and benefit from financial inclusion. The whole focus of financial inclusion has been to target people who have been excluded from the formal financial system, and I think that is where the greatest achievement for these efforts has been, and the constant improvement in financial inclusion index showing that more and more people are getting better services, they are utilizing it more. If you look at the composition of index, it's very interesting. It says quality, utilization accessibility. So these are the three main features of financial inclusion.
0: Right.
1: I think it's made a huge difference to India's growth.

0: Let's move on to the next story. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal interacted with the Indian business delegation comprising members of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, Confederation of Indian Industry, ASSOCHAM, and other regional associations in Brussels, Belgium. In a social media post, Mr. Goyal said that they discussed how the India-European Union Free Trade Agreement can open real doors for Indian industry and deliver tangible outcomes for Indian businesses, MSMEs, and people.
1: सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। बदली हुई दरों के तहत डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर 15.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि एटीएफ के निर्यात पर कर बढ़ाकर 14.50 रुपए प्रति लीटर किया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपए प्रति लीटर किया गया है। बदली हुई दरें आज से लागू हो गई है। हालांकि घरेलू खपत के लिए इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
0: पुनीत, हियर आई वांट टू टॉक बिकॉज लाइक निखिल जस्ट रेड दैट दिस इज एक्चुअली अ फोर्टनाइटली रिव्यू ऑफ फ्यूल एक्सपोर्ट टैक्सेस। सो व्हाट इज फॉर द इफ वी हैव टू यू नो फॉर आवर लिसनर्स इफ वी हैव टू टेल आवर लिसनर्स इन वेरी सिंपल लैंग्वेज व्हाट एग्जैक्टली इज द पर्पस ऑफ दिस फोर्टनाइटली रिव्यू एंड हाउ डज इट अफेक्ट द इकोनॉमी।
2: सो अनुभव, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज बिकॉज इट टेल्स यू नॉट व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री बट एक्चुअली इट टेल्स यू व्हाट इज हैपनिंग विजावी पेट्रोल एंड डीजल एंड एटीएफ डिमांड वर्ल्ड वाइड। व्हाई? बिकॉज इंडिया हैज नाउ बिकम वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज for petrol, refined petroleum products. See, we import crude oil, but we are also one of the world's largest exporters of refined products now. And government calibrates these taxes depending on the demand for these products. So if I look at this news, it tells me that government is expecting more exports from India, more pressure for exports from India for ATF and diesel. And therefore, we have raised custom duties. We want to retain some products within the country because there must be demand internationally. So mostly these figures or these taxes are revised based on international demand and also underlines the fact that India has now become a major exporter of refined products.
0: And would you also say that, you know, as and when, if supposing whatever, whether these export duties increased or decreased, it's also to do with whatever is happening on the international front, because if the prices go up, then obviously we also import. And so that's also to make sure that the domestic supplies remain intact and domestic domestic users get priority over exports.
2: So to some extent, yes, we are trying to protect and you know, build our own reserves. But the truth is that India, while it imports a lot of crude oil, we are very comfortable vis-a-vis the refining capacities. In fact, we are net exporters of refined products. So that is not that much of a concern for us. But it, of course, puts the taxes are in context of what is the demand internationally.
0: Right. Let's move on to commodities. Global crude oil prices were marginally up today as escalating Iran and U.S. tensions raised worries about a prolonged West Asia conflict. Brent crude was trading 0.2% up at $85.16 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.5% up at $80.02 per barrel when reports last came in. And let's have a look at the gold and silver prices as well. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 0.4% down at 1,41,870 rupees per 10 grams, while silver was trading over 0.9% down at 2,19,030 rupees per kilogram a short while ago.
1: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 0.4% गिरकर 1,41,294 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि सितंबर अनुबंध वाली चांदी 0.8% नीचे आकर 2,18,809 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। पुनीत, हमने कई सारे मुद्दों पर बात की, कई सारे विषयों को इस कार्यक्रम में लिया। आपके अनुसार आज के समय में निवेशकों को किन बातों पर मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए, किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से अपनी अप्रोच रखनी चाहिए वो मतलब एक अच्छा निवेश कर सकें?
2: देखिए निखिल, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो निवेशक हैं उनको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेना चाहिए, शॉर्ट टर्म अट्रैक्ट हो करके, चाहे वो गोल्ड सिल्वर हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो कमोडिटीज हो, उसमें लुभा करके उनको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा, मैं ये कहूंगा कि भारत की जो स्टोरी है उसमें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए बिकॉज हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी है और मुझे लगता है कि इसमें अगर जो लंबे समय तक निवेश करेंगे उनके लिए रिटर्न्स अच्छी रहेंगी। तो कुल मिलाकर डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, एसेट पोर्टफोलियो बिल्ड होना चाहिए, आपको हर एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए और खास तौर से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए।
1: यानी कि हर एक बात पर, छोटी हो या बड़ी हो, इस बात पे ध्यान देना बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल, और उस रिसर्च

0: करके, खुद रिसर्च करना बहुत जरूरी है। किसी की कहे सुनी बातों पर निवेश ना करें, वो सबसे बड़ा एक दुश्मन होता है हमारे पोर्टफोलियो का।
1: बिल्कुल पुनीत जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद निखिल।
2: एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस एंड ऑन फ्लैट नोट। सेंसेक्स सेटल्स एट 77,187, निफ्टी ड्रॉप्स 6 points. Most Asian stock market indices close in negative zone, and global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar.
1: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है और अभी आपसे आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

दोस्तों, कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आज यहीं तक। फिलहाल वक्त है समाचारों का, मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ अब भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका के समूह में शामिल हो जाएगा। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। एनटीए के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शनिवार को वे सिलीगुड़ी के जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे और बीएसएफ जवानों से बातचीत करेंगे। वे बीएसएफ से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा से जुड़े मुद्दों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3.76 करोड़ टन अनाज और 3.77 करोड़ टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से संपर्क किया। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हो गई है। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरप्पन राममोहन नायडू ने कल पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताडाली घुघस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रूपये से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा और माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बातचीत की और फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और फिनलैंड के संबंध एक नए महत्वपूर्ण दौर में प्रवेश कर रहे हैं। भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश डिजिटल और सतत विकास के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की ओर अग्रसर है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। कल सुबह

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और निशिगंधा में जो पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है अभिमान, आवाज है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

कहते हैं कि रात जब सब सो जाते हैं तो धीरे धीरे रात अपनी चादर को फैलाती है और तब कहीं दिल से हल्की सी आह खामोशी में सुनाई देती है। दिन भर की हंसी के पीछे छुपे वो अनकहे सवाल धीरे धीरे आंखों में उतर आते हैं और नींद से पहले एक कहानी बन जाते हैं। जब सब सो जाते हैं तब यादें भी दस्तक देती हैं, कुछ मुस्कुराती हुई कुछ चुपचाप रुला जाती हैं। वो बातें जो कभी कह नहीं पाए, वो एहसास जो शब्दों में ढल नहीं पाए, रात उन्हें अपने आंचल में लेकर चुपचाप सहला जाती है। जब सब सो जाते हैं तब हम भी थोड़े सच हो जाते हैं, न कोई दिखावा न कोई शोर, बस दिल और उसकी आवाज। कभी खुद से सवाल करते हैं और कभी खुद को ही जवाब भी देते हैं और इसी खामोशी में थोड़ा थोड़ा जी लेते हैं। रात सिखाती है हमें कि तन्हाई दुश्मन नहीं होती, कभी कभी यही तन्हाई हमारी सबसे सच्ची सबसे अच्छी दोस्त होती है। और अगला गीत फिल्म कामचोर से।

जब शहर की धड़कन धीमी पड़ जाती है और खिड़कियों की रोशनी एक एक करके बुझती है, तब कहीं भीतर एक छोटी सी दुनिया जागती है। वो दुनिया जहां कोई आवाज ऊंची नहीं होती, बस एहसास धीरे धीरे करके दिल की सतह पर उतरते चले जाते हैं। जब सब सो जाते हैं, तब वक्त भी जैसे ठहर जाता है। घड़ी की टिक टिक किसी अधूरी बात का जवाब लगती है। कभी कोई चेहरा याद आता है जो अब पास नहीं है, पर उसकी मुस्कुराहट हमेशा साथ है। अभी रात में साथ चलती है कुछ सपने जो दिन में खो गए थे। रात उन्हें फिर से याद दिलाती है, फिर से थाम लेती है और कहती है, चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं। इस सन्नाटे में हम अपने डर को भी सुन लेते हैं और हौसले भी, जो दिन की भीड़ में कहीं दब गए थे। जब सब सो जाते हैं तो दिल धीरे से कहता है, तुम अब अधूरे नहीं हो। और शायद यही वजह है कि हर

रात के अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी छिपी होती है। हर रात के अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी छिपी होती है। आप सुन रहे हैं निशिगंधा, और निशिगंधा में अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं।

या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और आपके साथ हूं मैं जयती। निशिगंधा में अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, आवाज है किशोर कुमार की और फिल्म का नाम है मिस्टर इंडिया।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और अगला गीत फिल्म का नाम है सरस्वती चंद्र, आवाज है मुकेश और लता मंगेशकर की।

वक्त आ चला है कि हम आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। अभी जिस गीत के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं, फिल्म का नाम है रुदाली, आवाज है आशा भोसले की। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियों चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। NTA के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शनिवार को वे सिलीगुड़ी के जुमागाछ सीमा चौकी पर का दौरा करेंगे। वे BSF से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा से जुड़े मुद्दों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हो गई है। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरप्पू महरामोहन नायडू ने कल पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताड़ाली घूगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा और माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बातचीत की और पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और फिनलैंड के संबंध एक नए महत्वपूर्ण दौर में प्रवेश कर रहे हैं। भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश डिजिटल और सतत विकास के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की ओर अग्रसर हैं। उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। कल सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए डटे हुए थे। इस बीच गुजरात, झारखंड, दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 234 रन का लक्ष्य दिया है।

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। गीत सुहाने में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है सच्चा झूठा, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

पंक्तियां हम लिखते तो हैं पर पूरी नहीं करते। जैसे दिल में एक खत शुरू होता है पर आखिरी शब्द कभी उतर नहीं पाता। कागज खाली नहीं होता, वो बस इंतजार करता है उन जज्बातों का जो कभी पूरी तरह कहे नहीं गए। कभी किसी नाम पर कलम रुक जाती है और वही ठहराव सबसे ज्यादा कुछ कह जाता है। जो पूरा लिख दिया जाता है वो शायद उतना खास नहीं होता जितना जो अधूरा रहकर भी सब कुछ कह जाए, क्योंकि हर कहानी अंत तक पहुंचे ये जरूरी नहीं। कुछ एहसास बीच में रुककर ही याद बन जाते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के

तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है खामोशी, आवाज है किशोर कुमार की।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। रात जब सब सो जाते हैं तो रात शोर नहीं करती, बस धीरे धीरे हर चीज को अपनी जगह पे रख देती है। बिखरे हुए दिन को समेटती है चुपचाप, थके हुए लम्हों को तकिए के नीचे सुला देती है। खिड़की से आती हवा कोई किस्सा नहीं सुनाती, बस पर्दों को हल्का सा हिलाकर याद दिला देती है सब ठीक है। जब सब सो जाते हैं तब कोई सवाल नहीं होता, न जवाबों की जल्दी, न किसी को समझाने की कोशिश, बस एक ठहराव होता है, जैसे जिंदगी ने थोड़ी देर के लिए खुद को पॉज कर लिया हो। इस सन्नाटे में ना कोई अधूरी बात चुभती है, ना कोई पुरानी याद खींचती है, बस एक हल्की सी राहत होती है, जैसे किसी ने दिल पर हाथ रखकर कहा हो, आज के लिए इतना काफी। जब हम सो जाते हैं तब रात सिखाती है कि हर चीज को महसूस करना जरूरी नहीं, कुछ लम्हों को बस यूं ही बीत जाने देना भी सुकून देता है। अगला गीत लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज में, फिल्म का नाम है प्रोफेसर।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, और गीत सुहाने में अब जो अगला गीत आप सुनेंगे, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने।

और वक्त आ चला है कि आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे FM गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ अब भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले भारत, जापान, चीन और अमेरिका के समूह में शामिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। एनटीए के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शनिवार को वे सिलीगुड़ी के जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे बीएसएफ से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा से जुड़े मुद्दों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे हैं और लगभग 1 करोड़ किसानों से संपर्क किया। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हो गई है। ये हवाई संपर्क की एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापुर राम मोहन नायडू ने कल पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताड़ाली घुगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के अंतर्गत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए, ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सके। न्यायालय की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे 9वीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू नहीं करें। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। कल सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए जुटे हुए थे। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 44 ओवर में 233 रन पर ऑल आउट हो गई। श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 66 रन बनाए, वहीं विराट कोहली ने 65 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही, लेकिन अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने नाबाद 99 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में जो पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है पाकीज़ा, आवाज़ है लता मंगेशकर की।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई, साथ हूं मैं जयती। एक हल्की सी जगह, भीतर भीतर कहीं एक जगह ऐसी भी होती है जहां कोई आवाज नहीं पहुंचती, ना कोई सवाल, ना शब्दों की भीड़, ना किसी को समझाने की कोशिश, बस एक सादा सा सुकून जो बिना वजह ठहरा रहता है। दिन भर की भागती सोच जब थक कर लौटती है तो उसी जगह धीरे से बैठ जाती है। ना कोई शिकायत होती है वहां, ना कोई अधूरी चाह, जैसे सब कुछ वैसा ही ठीक हो जैसा होना चाहिए। कभी कभी ये महसूस होता है कि हम खुद से दूर नहीं थे, बस रास्ता थोड़ा धुंधला था, और जब वो साफ होता है तो पता चलता है सुकून कहीं बाहर नहीं, हमारे ही भीतर चुपचाप इंतजार कर रहा था। कोई शोर नहीं करता, ना ही हमें पुकारता, बस एक हल्की सी जगह बनाकर हमारे लौट आने का धैर्य से इंतजार करता। अगला गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी। आइए सुनते हैं ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती, और अब जो गीत आप सुनने जा रहे हैं फिल्म का नाम है आज का अर्जुन। आवाज है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की।

मैंने मन के सबसे भीतरी सलवट में एक जगह बचा कर रखी है, जहां कोई दस्तक नहीं पहुंचती, ना किसी रिश्ते का अधिकार। वहां कुछ अधूरी पुकारें हैं जो होठों तक आकर लौट गई थी। कुछ पन्ने हैं जिन पर नाम तो लिखे गए पर भेजे कभी नहीं गए। वहां एक कोना ऐसा भी है जहां मैं बैठी रहती हूं, अपने कई रूपों के साथ, कभी प्रश्न बनकर कभी उत्तर से दूर भटकती हुई। कुछ दृश्य हैं जो आंखों से उतर तो गए पर भीतर की मिट्टी में अब भी जड़ें फैलाए हुए हैं। मैंने उन्हें छिपाया नहीं, बस संसार की भीड़ से बचाया है। कुछ बातें नदी की तरह होती हैं, बहती तो भीतर है पर उनका मार्ग किसी मानचित्र में दर्ज नहीं मिलता।

किसी सांझ की भीगी देहरी पर मैंने कुछ अभिलाषाएं रख छोड़ी थी, न मांगी थी किसी भाग्य विधाता से, न हथेलियों की रेखाओं में जोड़ी थी। वे बस मेरी पलकों की तह में धीरे धीरे अंकुरित होती रही, जैसे निर्जन वन में कोई बेल बिना दर्शक के बढ़ती रही। फिर जीवन ने अपने निर्णय लिखे, मैंने भी बिना वाद विवाद पढ़ लिए। कुछ मोड़ों पर मुस्कानों के दीप जले, कुछ मोड़ों पर अपने ही स्वर गढ़ लिए गए। पर एक कोना ऐसा भी बचा जहां कोई ऋतु नहीं पहुंची, वहां आज भी कुछ आकांक्षाएं निष्कर्ष तक लौटती हैं। वे हार नहीं थी, बस नियति की मोहर उन्हें न मिल सकी। वे भूल नहीं थी, बस उन्हें किसी नाम की जरूरत नहीं रही। कितनी ही कथाएं लिखी जाती हैं विजयों के स्वर्णिम पृष्ठों पर, किंतु जो मन के अंतराल में ठहरे वे कहां उतरती हैं इतिहासों पर। और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। समाचारों के बाद मीना होंगी आपके साथ। अभी छोड़े जाते हैं आपके एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है 2 रास्ते, आवाज है मोहम्मद रफी की। तो मुझे दीजिए अनुमति, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका के समूह में शामिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी

0: हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शनिवार को वे सिलीगुड़ी के जूमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे बीएसएफ से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा से जुड़े मुद्दों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1,00,00,000 किसानों से संपर्क किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। एनटीए के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधारित वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हो गई है। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने कल पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताडाली घुगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से माल ढुलाई की बढ़ती कीमत को पूरा करने में मदद मिलेगी। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। ब्राजील ने अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ का विरोध किया है और अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाने की चेतावनी दी है। अमेरिका ने ब्राजील से आने वाले कुछ उत्पादों पर 25% नया शुल्क लगाने की घोषणा की है। ये फैसला कथित अनुचित व्यापारिक गतिविधियों के आधार पर लिया गया है। नए शुल्क 22 जुलाई से लागू होंगे। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 44 ओवर में 233 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत के श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 66 रन बनाए। विराट कोहली ने 65 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही, लेकिन अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने नाबाद 99 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को जीत लाई। जो रूट को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है हमराही और मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, प्यार, एहसास और खूबसूरत धुनों से सजी इस महफिल में आपका दिल से स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनिंदा गीतों का ऐसा नजराना जो आपकी शाम को यादगार बना देगा। तो मुस्कुराइए, दिल को सुकून दीजिए और हमारे साथ इस संगीत भरे सफर का आनंद लीजिए।

दोस्तों कहते हैं कि मोहब्बत का एहसास किसी मौसम का मोहताज नहीं होता। कभी किसी की मुस्कान में बस जाता है तो कभी किसी की खामोशी में अपना घर बना लेता है। जब दिल

सचमुच किसी को अपना मान लेता है ना, तो हर दुआ में वही नाम शामिल हो जाता है और हर ख्वाब उसी की तस्वीर से सजने लगता है। तो चलिए सुनते हैं अगला गीत इसी एहसास के अनुसार।

दोस्तों, अगर आपके दिल में भी किसी के लिए कोई अनकही बात है, कोई खूबसूरत एहसास है ना, तो आज उसे महसूस कीजिए, क्योंकि सच्चा प्यार दुनिया से नहीं डरता और वो बस अपने दिल की सुनता है।

जानते हैं दोस्तों, जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानियां अक्सर वहीं से शुरू होती हैं जहां हम कहते हैं नहीं, और दिल मुस्कुराकर कहता है यही तो प्यार है। तो आइए सुनते हैं एक ऐसा ही सदाबहार नगमा जो मोहब्बत के इसी मासूम इकरार को बेहद खूबसूरती से बयां करता है।

जब किसी अपने का साथ मिल जाता है ना, तो लगता है जैसे जिंदगी ने अपनी सबसे खूबसूरत नेमत दे दी हो। फिर दिल यही कह उठता है और किसी चीज की तमन्ना नहीं रहती, क्योंकि जिसे चाहा था वही मिल गया। इन्हीं जज्बातों को सुरों में सजता हुआ गीत लीजिए पेश है।

0: बाकी के नगमे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं FM 100.1 MHz पर। कार्यक्रम चल रहा है हमराही और मैं हूं आपके साथ मीना चौहान।

दोस्तों, मोहब्बत में सबसे प्यारी चीज होती है अपनेपन की एक आवाज। कभी किसी का नाम लेकर पुकारना, कभी किसी की आहट पहचान लेना, तो कभी बिना कुछ कहे दिल का हाल समझ लेना। प्यार में दूरियां उतनी तकलीफ नहीं देती जितनी खामोशी देती है। कई बार दिल बस इतना चाहता है कि कोई अपना एक बार पुकार ले और सारी शिकायतें, सारी दूरियां पल भर में मिट जाए। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसा ही नगमा।

करना, कभी किसी की आहट पहचान लेना, तो कभी बिना कुछ कहे दिल का हाल समझ लेना। प्यार में दूरियां उतनी तकलीफ नहीं देती जितनी खामोशी देती है। कई बार दिल बस इतना चाहता है कि कोई अपना एक बार पुकार ले और सारी शिकायतें, सारी दूरियां पल भर में मिट जाए। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसा ही नगमा।

कुछ लोग बहुत अजीब होते हैं। उनकी आंखें सब कुछ कह देती हैं, लेकिन होंठ हमेशा खामोश रहते हैं। दिल में मोहब्बत का समंदर होता है, मगर इजहार की बारी आए तो मुस्कुराकर बात बदल देते हैं। शायद उन्हें लगता है कि प्यार छिप जाएगा, लेकिन सच्चे जज्बात कब छिपे हैं भला। मोहब्बत की खुशबू तो बिना कुछ कहे भी महसूस हो जाती है। नजरों की भाषा, मुस्कुराहट का इशारा और खामोशी की धड़कनें सब राज खोल ही देती है।

जब नजरें झुकती हैं ना तो अक्सर दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और शायद वहीं से शुरू होती है एक खामोश लेकिन बेहद खूबसूरत प्रेम कहानी। इन्हीं दिलकश एहसासों को सुरों में पिरोता हुआ पेश है अगला नगमा।

दोस्तों, प्यार का सबसे खूबसूरत इजहार शायद यही है कि किसी से कहा जाए, तुम्हारे होने से मेरी दुनिया मुकम्मल है और तुम्हारे सिवा कोई ख्वाहिश बाकी नहीं है। तो आइए इसी बेइंतहा मोहब्बत के एहसास को सुरों में महसूस करते हैं और सुनते हैं ये गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका के समूह में शामिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है।

0: आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शनिवार को वे सिलीगुड़ी के जूमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे बीएसएफ से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा से जुड़े मुद्दों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1,00,00,000 किसानों से संपर्क किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। एनटीए के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हो गई। ये हवाई संपर्क के लिए एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पो राममोहन नायडू ने कल पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। ये ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताड़ाली घूगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। ब्राजील सरकार ने अमेरिका की ओर से लगाए गए नए टैरिफ का विरोध किया है और अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाने की चेतावनी दी है। अमेरिका ने ब्राजील से आने वाले कुछ उत्पादों पर 25% नया शुल्क लगाने की घोषणा की है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा के कार्यालय ने अमेरिकी आरोपों को खारिज किया है। ब्राजील ने कहा है कि वे जवाबी शुल्क और अन्य व्यापारिक कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज सुबह 9:30 बजे फिर शुरू होगी। कल रात अंधेरा होने पर रथों को रोक दिया गया था। आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथ श्री गुंडीचा मंदिर की ओर आगे बढ़ेंगे। रथ यात्रा में शामिल होने के लिए लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचे हैं। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 44 ओवर में 233 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत के श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 66 रन बनाए, वहीं विराट कोहली ने 65 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही, लेकिन अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने नाबाद 99 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: It says Akashwani, the news read by Harpreet Kaur. India has crossed the 1 billion mark in social protection coverage. In a social media post, Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandavia said, India's social protection coverage has expanded from 19% in 2015 to 68.4% in 2026, bringing more than 100 crore citizens under the umbrella of social protection framework. He said this reflects the Narendra Modi government's commitment to Sabka Saath Sabka Vikas. India's social protection system has expanded significantly through various welfare programs aimed at providing financial security, healthcare and food assistance to millions. These initiatives have played a crucial role in improving livelihoods and reducing poverty across the country. Prime Minister Narendra Modi will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station today during his visit to Haryana. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 4:11:10। अरुणिमा कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार।

उसकी सादगी, उसकी मोहब्बत और उसका बर्ताव, वही हमेशा याद रहता है। हुस्न पर इतराने वाले बहुत मिल जाते हैं, मगर दिल जीतने वाले बहुत कम होते हैं।

जिंदगी की राहें चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हम सफर साथ होना तो हर सफर आसान लगता है। मंजिल से ज्यादा उसके साथ चलने का एहसास बहुत खूबसूरत लगता है। दुनिया की दौलत, शोहरत और रंगीनियां भी उस सुकून के आगे फीकी है जो हम सफर के साथ होने से मिलता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

दोस्तों, जिंदगी हर रोज एक सी नहीं रहती। कभी खुशियों के फूल खिलते हैं तो कभी इम्तिहानों की आंधियां चलती है। ऐसे में जो हाथ नहीं छोड़ते हैं ना, जो कभी साथ नहीं छोड़ते हैं ना, वही असली हम सफर कहलाता है। तो आइए अब सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जो हम मोहब्बत के इसी खूबसूरत वादे को अपने सुरों में पिरोता है।

दोस्तों कहते हैं जब दो दिल एक दूसरे को समझने लगते हैं ना तो उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं रहती। एक की धड़कन सुर बन जाती है तो दूसरे का एहसास गीत बन जाता है। रिश्तों की सबसे खूबसूरत बात यही है कि उनमें कोई आगे नहीं चलता और कोई पीछे नहीं रहता। दोनों मिलकर जिंदगी की एक प्यारी सी धुन रचते हैं। जब सुर और गीत साथ हों तभी संगीत मुकम्मल होता है। ठीक वैसे ही जैसे प्यार और भरोसा मिलकर एक खूबसूरत रिश्ता बनाता है।

दोस्तों, कभी कभी मोहब्बत किसी को रोकती नहीं है, बस इतना कहती है कि चाहे जितनी दूर चले जाओ, दिल से दूर नहीं जा पाओगे। कुछ रिश्तों की डोर ऐसी होती है जो नजरों से ओझल होकर भी टूटती नहीं है। कदम भले ही दूसरी राह पकड़ ले, लेकिन यादें हमेशा उसी मोड़ पर इंतजार करती रहती है। और जब किसी की मोहब्बत सच्ची हो तो उसे यकीन होता है कि लौटकर आने का रास्ता दिल ही दिखाएगा। इसी खूबसूरत एहसास को बेहद खूबसूरत अंदाज में गाया है। आइए सुनते हैं अगला गीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही अरुणिमा कार्यक्रम से मुझे दीजिए इजाजत। 5:10 पर आपके साथ रहूंगी कार्यक्रम भोर सुहानी में। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका के समूह में शामिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद के मॉनसून सत्र से पहले आज एनडीए की बैठक होगी। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। बैठक में संसद में पेश किए जाने वाले विधेयकों पर विचार विमर्श होगा। सूत्रों के अनुसार परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर भी विचार किया जाएगा। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शनिवार को वे सिलीगुड़ी के जूमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे बीएसएफ से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे।

0: मंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा से जुड़े मुद्दों पर बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,73,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। एनटीए के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हो गई है। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने कल पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताडाली घूगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायता मिलेगी। ब्राजील ने अमेरिका की ओर से लगाए गए नए टैरिफ का विरोध किया है। अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाने की भी ब्राजील ने चेतावनी दी है। अमेरिका ने ब्राजील से आने वाले कुछ उत्पादों पर 25% नया शुल्क लगाने की घोषणा की है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज सुबह 9:30 बजे फिर शुरू होगी। कल रात अंधेरा होने पर रथों को रोक दिया गया था। आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथ श्री गुंडीचा मंदिर की ओर आगे बढ़ेंगे। रथ यात्रा में शामिल होने के लिए लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचे हैं। उधर कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 44 ओवर में 233 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही, लेकिन अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने नाबाद 99 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will visit Haryana, Chandigarh and Punjab today. During his visit to Haryana, the Prime Minister will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station. The Prime Minister will also lay the foundation stone and dedicate to the nation various development projects worth around 14,700 crore rupees at Eklavya Stadium at Jind and address the gathering on the occasion. The launch of the first hydrogen-powered train marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector. From Jind, Prime Minister will travel to Chandigarh, where at around 1:45 p.m. he will lay the foundation stone and inaugurate various development projects worth over 4,700 crore rupees. He will also address the gathering on the occasion. Subsequently, Prime Minister will visit Jalandhar in Punjab, where he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth over 5,470 crore rupees. Prime Minister Modi held a conversation with the Amir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, and conveyed his condolences on the passing of the father Amir, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. In a social media post, Mr. Modi said that the father Amir of Qatar's enduring legacy will continue to guide the two countries as they further strengthen their strategic partnership. He also recalled father Amir's deep affection for India, his warmth towards the Indian community in Qatar, and his steadfast commitment to India-Qatar relations. Ahead of the monsoon session of Parliament beginning on 20th of July, the BJP-led NDA is set to finalise its floor strategy at a meeting of senior alliance ministers chaired by Defence Minister Rajnath

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो चुका है 5:11 और 5 सेकंड। भोर सुहानी कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार।

दोस्तों, जिंदगी कभी भी खाली हाथ इंतजार नहीं करवाती है। हर ठहराव के पीछे एक सीख होती है, हर देरी के पीछे एक बेहतर मंजिल छिपी होती है। इसलिए अगर आज रास्ते सुनसान है ना, तो घबराइए मत, चलते रहिए, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो कदम रोकते नहीं है, चाहे साथ कोई हो या ना हो।

दोस्तों, बहार सिर्फ मौसम में नहीं आती, बहार तो रिश्तों में भी आती है। जब हम एक दूसरे का हाथ थामकर साथ चलते हैं ना, तो एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। याद रखिए, अकेला इंसान तेज चल सकता है, लेकिन मिलकर चलने वाले लोग बहुत दूर तक पहुंचते हैं। एकता में वो ताकत है जो बड़ी से बड़ी चुनौती को भी आसान बना देती है।

दोस्तों, धन दौलत, शोहरत और शरीर सब यहीं रह जाते हैं, लेकिन अच्छे कर्म और मीठे बोल समय की सीमाओं को भी पार कर जाते हैं। ऐसा जीवन जियो कि जाने के बाद भी लोग कहें इंसान चला गया, मगर उसकी बातें आज भी दिलों में जिंदा है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।